कई बार हम जिंदगी में जो कदम उठाना चाहते हैं वो हम नहीं उठाते, हम जो करना चाहते हैं वो हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये बात जो है ये हमारे जहन में रहती है। तो देखिए दोस्तों, आप अभी ये सोच रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली कोई आपके बारे में सोच ही नहीं रहा था, कोई आपको देख ही नहीं रहा था, क्योंकि किसी के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि कोई आपको देखे, आपके बारे में सोचे। उस वक्त आपको पछतावा होगा कि काश हम जो करना चाहते थे वो हमने किया होता। देखिए लोग क्या सोचेंगे, ये सोचना बंद करिए और वो करिए जो आप करना चाहते हैं। अपनी जिंदगी को जीने के लिए जिंदगी जो है वो आपको एक ही बार मिली है, और कितने दिन की मिली है ये आपको नहीं पता है। इसलिए वो सब करिए जो इस जिंदगी से आप करना चाहते हैं, जो इस जिंदगी में आप पाना चाहते हैं, ताकि कल एक गिल्ट ना रहे कि यार किया होता तो अच्छा होता है ना। एक और ट्रैक इसी बात पर सताक्षी के साथ सुनिए अभी, और सुनते रहिए ठापन्स रेडियो प्रस्वानी 107.01 AM पर।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

कर लेते हैं आदत की। हाँ, यूं तो हमारी बहुत सारी आदतें होती हैं, लेकिन क्या आपको कभी एक ऐसी आदत पड़ी है, एक ऐसे इंसान की आदत कि सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल उसका आए, रात को जब सोने चले तो आखिरी याद जो आंखें बंद होने से पहले आए वो याद भी उसकी हो, सुबह उठते ही फोन पर सबसे पहले उसका मैसेज चेक किया जाए और रात को उससे बातें करते हुए दिन का हाल बताते हुए आपके शाम का, आपकी रात का जो है वो अंत हो। एक ऐसा इंसान जो जिंदगी में आपका ऐसा सुकून हो कि जब भी कुछ लाइफ में अच्छा हो आप सबसे पहले उसके पास पहुंच जाएं, और अगर दिन अच्छा ना गुजरे, लाइफ में कुछ बुरा हो, कोई डिसअपॉइंटमेंट हो, तो आप सबसे पहले उसके साथ उस बात को शेयर करें और खुद को हल्का करें, जिसके साथ होने पर आपको कभी ये एहसास ना हो कि आप अकेले हैं। भले ही वो आपसे दूर है, लेकिन वो अकेलापन जो है वो आपकी जिंदगी का हिस्सा ना बने। है कोई ऐसा जिंदगी में? अगर आपकी जिंदगी में भी कोई एक ऐसा है, आपका यार, आपका साथी, तो बस उसी के नाम है ये अगला ट्रैक, इसे सुनेंगे और फिलहाल इस सफर में भी आगे बढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ, यू ही एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस।

बात करते हैं फीलिंग्स और ईगो के बीच की। फीलिंग्स और ईगो, इन दोनों के बीच क्या कोई रिश्ता है? भाई डेफिनेटली इन दोनों के बीच रिश्ता तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिश्ते खत्म करने का काम करते हैं। ये दोनों अगर साथ हो जाएं तो कितना भी गहरा, कितना भी पुराना रिश्ता हो, वो मिट्टी में मिल जाता है। फीलिंग्स एक रिश्ते को बनाती हैं, वहीं ईगो उस रिश्ते को मिटाने का काम करता है। तो भला ये दोनों साथ कैसे चल सकते हैं? इसीलिए अगर आपके दिल में किसी के लिए जज्बात हैं, किसी के लिए फीलिंग्स हैं, तो ईगो को दूर रखिए, क्योंकि जहां ईगो आया ना, वो सबसे पहले उस इंसान के लिए आपकी फीलिंग्स को खत्म करता है। हमेशा खुद को सुपीरियर और दूसरे को इन्फीरियर दिखाता है। हमेशा सिर्फ और सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं जब आप ईगो में होते हैं। सामने वाले की ना तो परवाह, ना उसकी फीलिंग्स की परवाह, और ना ही उस ईगो में जब आप होते हैं आपको उस रिश्ते की परवाह रहती है, जो शायद आपके लिए भी, आपकी नजर में भी आपका सबसे कीमती और खूबसूरत रिश्ता है। यू नो, ईगो में आने के बाद इंसान बहुत सारी गलतियां क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है कि वो गलत है, बस एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। और ये एक्सेप्टेंस जो है, जो अपनी गलतियों को छुपाने की उसकी आदत पड़ जाती है, यही रिश्ते का खात्मा करने की वजह भी बन जाती है। इसलिए अगर रिश्ता है, फीलिंग्स हैं, तो ईगो को दूर रखिए, वरना वही ईगो उस फीलिंग्स को ही खत्म कर देगा जो किसी के लिए बेशुमार है आपके दिल में। स्टे ट्यून, रेडियो प्रसवानी सताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए इट हैपेंस। आइए आगे बढ़ते हैं इस अगले ट्रैक के साथ।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

व्हाट हैपेंस सताक्षी के साथ, आप यही सफर इस वक्त रेडियो प्रस्वानी पर दोस्तों एंजॉय कर रहे हैं और मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं कई खूबसूरत बेहतरीन और शानदार मॉर्निंग ट्रैक्स भी। देखिए भगवान श्री कृष्ण की कई बातें जो हैं वो दिल में जहन में हमारी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसी एक बात उन्होंने कहा है कि यार छोड़ देना है ना अच्छा होता है, कभी कभी जाने देना छोड़ देना अच्छा होता है। जैसे कि कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब आपको परेशान करें या शायद जवाब हो ही ना, वो ऐसे रिश्ते वो ऐसे लोग जो आपको परेशान करें, आपकी जिंदगी को आगे बढ़ने से रोकें, उन लोगों को उन इमोशंस को जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं उन इमोशंस को छोड़ देना। तो कई ऐसी चीजों को छोड़ देना बहुत बढ़िया है, बहुत लाजमी है, जिनसे जिंदगी की ग्रोथ रुक रही है, आपकी खुद की ग्रोथ रुक रही है और आप परेशान हो रहे हैं। तो हाँ कई बार चीजों को जाने देना या छोड़ देना अच्छा होता है। छोड़ दीजिए उन चीजों को, उन लोगों को, उन बातों को, उन सवालों को, उन इमोशंस को जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं या आपकी ग्रोथ में आगे रुकावट डाल रहे हैं। एक और ट्रैक इसी बात पर सताक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी 1701 एफएम पर।

फ्रेंड्स, ये था आज एक और हमारा आपका इट हैपेंस पर साथ। और इट हैपेंस में आज हमने फिर से कुछ जबरदस्त बातों को जिया, उन्हें सेलिब्रेट किया। और आई होप कि आज के ये गाने और आज के ये लम्हे भी आपको जरूर अच्छे लगे होंगे। तो देखिए, दिन तो नया शुरू हो चुका है, आपको इस दिन को कैसे जीना है ये काफी कुछ आप पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि हम अपना दिन जैसे बनाना चाहते हैं हमारा दिन वैसा ही बनता है। आई होप आप अपने दिन को पॉजिटिव और लविंग बनाना चाहेंगे, तो बनाते रहिए। और आज के सफर से आप लेगी सताक्षी इजाजत। हैव अ ग्रेट डे, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। नमस्कार।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਔਲਕ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਬਿਸਵਾਨੀ 101.9 ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਮ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਣ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੀਂਦ ਦੇ ਅੰਕਿਤ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ अरुण महिंद्रू समेत पंजाब के कई सीनियर अधिकारियों भी नामजद किया गया है। यह मामला जसप्रीत उर्फ जसी नाम के व्यक्ति की शिकायत दर्ज होया जो एक साइबर लैब विच काम करता है। जसप्रीत अनुसार उस मुख्यमंत्री नाल संबंधित विवादित वीडियो की जांच ते विश्लेषण करने लई कुछ इलैक्ट्रॉनिक समग्री सौंपी गई सी। जांच तो बाद जसप्रीत ने कहा है कि वीडियो की गुणवत्ता अजिही नहीं है कि उसते कोई भरोसेयोग विज्ञानिक सिट्टा कढ़िया जा सके जां उसका पुख्ता डीपफेक टेस्ट किया जा सके। उसने यह भी साफ कर दिता है कि वह खुद अजिही कोई अधिकारित या प्रमाणित माहिर राय देने अधिकारित नहीं है। शिकायतकर्ता ने दोष लगाया है कि जदों उसने अधिकारियों की इच्छा अनुसार रिपोर्ट देने तो मना कर दिता तो कुछ सीनियर अधिकारियों ते होर लोगों ने उसते दबाव पाया। उस अनुसार उसनू डराया धमकाया गया ते एक फर्जी फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने लई मजबूर किया गया। जसप्रीत ने हरियाणा पुलिस नूं दस्सिया है कि इस घटना तो बाद उसका परिवार बहुत डरिया हुआ है ते ओ हुण पंजाब दी सुरक्षा पंजाब विच सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। उसने अपनी ते अपने परिवार की जान नूं गंभीर खतरा दस्सदिया हरियाणा पुलिस तो तुरंत सुरक्षा की मांग की है। जिक्र योग है कि दो दिन पहला कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने दावा किया कि गुरुग्राम दी लैब ने मुख्यमंत्री की वीडियो की झूठी रिपोर्ट तैयार की है। पहला पुलिस ने लैब संचालक की गिरफ्तारी तो इनकार किया सी पर हुण FIR दर्ज होने नाल इस मामले ने सियासी रूप ले लिया। हालांकि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने वायरल वीडियो मामले विच लगे सारे दोषियों सिरे तो खारिज कर दिता है। आप आगुआ वालों कहा जा रहा है कि इस वीडियो विच दिखाए जाने वाला व्यक्ति भगवंत मान नहीं बल्कि कोई होर है। उधर पंजाब कांग्रेस विच चल रही संगठनात्मक तब्दीलियां ते लीडरशिप बदलाव दीआं चर्चावां विच अज चंडीगढ़ तो संसद मैंबर मनीष तिवारी ने अपनी नाराजगी खुल के जाहिर की है। मनीष तिवारी का कहना है कि पंजाब कांग्रेस दे ढांचे विच संभावित बदलावां संबंधी दिल्ली विच हुईआं मीटिंगां दौरान उन्हां नूं ना तां सद्दा दित्ता गया ना ही उन्हां तों राय लई गई है। मनीष तिवारी ने कहा है कि पंजाब कांग्रेस दे भविख ते संगठनात्मक ढांचे बारे विचार वटांदरे लई लगभग 60 आगुआं नाल सलाह मशवरा किया गया पर इस पूरी प्रक्रिया तो बाहर रखा गया। इस गल नूं लै के उन्होंने नाराजगी भी जताई अते पार्टी हाईकमान नूं नसीहत भी दित्ती। उन्होंने कहना है कि जे किसी सूबे विच संगठनात्मक बदलाव करने होण तां इह चोणां तों घट्टो घट 24 महीने पहला किते जाने चाहीदे हन तां जो नवीं टीम नूं कम करन लई पूरा समा मिल सके। तिवारी दे अनुसार मौजूदा समय पंजाब विधानसभा चोणां विच केवल कुछ ही महीने बाकी हन अजिहे वेले वड्डियां तब्दीलियां करना पार्टी लई लाभकारी नहीं होवेगा। उन्होंने इशारा किया कि जे कांग्रेस ने संगठन विच कोई सुधार या पुनर्गठन करना सी तां एक कदम काफी पहला चुक्या जाना चाहिदा सी। चोणां दे नेड़े आके कीते जाण वाले बदलावां नाल नवीं टीम नूं अपने आप नूं स्थापित करन अते कार्ज कुशलता दिखाउण विच लोड़िंदा समां नहीं मिलेगा। उधर दूजे पासे शिवसेना आगू ते होए हमले अते सोशल मीडिया ते शुरू हुई वीडियो वार मंखरो पुलिस कमिश्नर दफ्तर दे बाहर माहौल उस वेले बेहद तनावपूर्ण हो गया जदों रोहिंग सिंह अते शिवसेना आगू आमणे सामणे हो गए। दोहां धिरां वल्लों जोरदार नारेबाजी की गई अते एक दूजे नूं वेख के ललकारे मारे गए। स्थिति विगड़दी देख उथे तैनात भारी पुलिस फोर्स ने तुरंत एक्शन लिया अते दोहां धिरां विचाले कंध बण के उन्हां नूं वक कर दिता। पुलिस ने सियाणप वरतदिआं दोहां धिरां नूं शांत करवाया अते लुधियाणा नूं इक वड्डे टकराव तों बचा लिया। उधर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने महाराष्ट्र सरकार वालों तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब अबचल नगर नांदेड़ दे प्रबंध संबंधी 1956 दे कानून नूं रद्द करके नवां कानून बनाए जाण संबंधी फैसले ते गहरी चिंता प्रगटाई है। श्रोमणी कमेटी प्रधान ने कहा है कि तख्त श्री हजूर साहिब सिख कौम दे पंज तख्तां विचों एक महान पावन स्थान है जिस दी मर्यादा प्रबंध ते धार्मिक खुद मुख्तियारी नाल जुड़े किसी भी फैसले तों पहला सिख संस्थावां तख्त साहिबान दे जथेदार साहिबान
सिखां दी नुमाइंदगी धार्मिक संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल सलाह मशवरा करना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि सरकार सिख संस्थावां कमजोर करने लिए अजिहे कोझे यतन कर रही हैं जिस नूं सिख संगतां कदे प्रवान नहीं करनगियां। श्रोमणी कमेटी प्रधान ने कहा है कि मिली जानकारी अनुसार महाराष्ट्र सरकार दे मंत्रिमंडल वल्लों तख्त श्री हजूर साहिब प्रबंधकी बोर्ड संबंधी कानून पुराना होने का हवाला दे के मनमर्जी की सोध करने का यतन किया जा रहा है जो गुरुद्वारा प्रबंध विच सरकार की सीधी दखलअंदाजी। उन्होंने कहा है कि 2024 भी महाराष्ट्र सरकार वालों गुरुद्वारा बोर्ड विच सरकारी नामजद मैंबर की गिनती वधाउण ते सिख संस्थावां दे मैंबर नूं घटाउण का फैसला करने का यतन किया गया सी जिस ते सिख संगतां वालों वड्डा विरोध करन मगरों सरकार पिछे हटी सी। उधर पंजाब तो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड दे नगरसू विच गुरुद्वारा साहिब रुके नहिंग सिंह चौथे दिन पंजाब परत आए। गुरुद्वारे दा प्रबंध सेवादार बाबा बेअंत सिंह नूं वापस सौंप दिता गया। नहिंगा ने दस्सिया कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुख्यमंत्री धामी नाल मुलाकात कीती है ते ओह मीटिंग दौरान मिले भरोसे तों बाद वापस परत आए हन। गुरुद्वारे संबंधी विवाद आपसी गलबात ते प्रशासन दे सहयोग नाल शांतिपूर्वक हल हो गया। उत्तराखंड सरकार प्रशासन पुलिस धार्मिक आगुआ ने मिलकर हल लभण लई काम किते। हेमकुंड साहिब यात्रा बिना किसी रुकावट के आम वांग जारी रहेगी। इस दौरान सरकार पुलिस ने सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। स्थिति नूं संभालण लई पुलिस IT BP ते PSC दे कर्मचारी कई दिनों तो उत्थे तैनात सन। रुद्रप्रयाग प्रशासन इस मामले संबंधी समूह नाल लगातार गलबात कर रहा सी। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਬਸ ਇਨਾ ਹੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ bruswani@bruswani.com। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਰੇਡੀ ਬ੍ਰਿਸਵਾਨੀ 1091। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ
1: ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆਏ ਹਾਂ
0: ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇਹ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
2: ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਅੱਜ ਮੱਥੇ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ
3: ਸਮੇਟ ਕੇ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
4: ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ ਹੋਣੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
5: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
6: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
7: जस्ट मूव फ्रॉम ओवरसीज, स्टार्ट बैंकिंग लाइक अ लोकल विद ANZ। वी आर वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट बैंक्स एंड वी आर चोजन बाय मिलियंस। For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
5: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bin Coin. Save, spend or donate your Bin Coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी तुम बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101 एम ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बन चुके हो ढेर सारिया गल्लां करन दा सारा बहुत ही ज्यादा सोहना जिहा वेला हो चुका है जी शुरू ते इन्हां गल्लां नूं सुलगाउणा पंजाबी गीतां दा तड़का तुसीं की खाणा है तुसीं जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो रेडियो सोनी 101 एम सर फेसबुक पेज अजीत बिस्वानी @bisswani.com साडी ईमेल आई डी है जरिया जेड़ा तुहानू चंगा लगता तुसीं अपना लो साडे नाल गल्लबात जरूर करो तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू करो मैं हुणे वापस होने कि तिन जाना तुहाडे नाल गल्लबात जरूर करते रहना बस तुसीं जुड़ना ना भुलो हुणे वापस आई मैं तुसीं उहनां समां इन्हां सोहणे जिहे गीतां नूं इंजॉय करो।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज़ होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: ARY Films and Salman Iqbal present Love Thee Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love Thee Song in cinemas this Eid-ul-Azha, May 27th.

जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिसोनी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो शराब दी लत हुंदी है ना जेड़ी वह ना सिर्फ सेहत दे बहुत ज्यादा हानिकारक हुंदी है बल्कि शरीरिक मानसिक अते समाजिक जीवन नूं भी हौली हौली ना बर्बाद ही कर दिंदी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री दे विच वी अजिहा होया है। बिल्कुल सही सुनिया तुसी, बॉलीवुड इंडस्ट्री विच अजिहे कई सितारे हैगे ने जिन्हां नूं शराब दी लत लग गई सी। इस बुरी आदत ने कई सारे एक्टर्स का करियर हैगा ने जिहड़ा तबाह कर दिता सी ते कई कलाकारां दी जिंदगी नूं मुश्किल बना दिता सी। कुछ सितारियां ने इस लत तों बाहर निकल के अपनी जिंदगी सवारी तां कुछ इस दे शिकार बन के रह गए। तां अज मैं तुहानूं बॉलीवुड दे कुछ उन्हां स्टार्स बारे दसूंगी जिन्हां दी शराब दी लत ने उन्हां दे करियर अते जीवन ते बहुत ही ज्यादा डूंगा असर पाया सी। केड़े केड़े ने इस लिस्ट विच करदे उन्हां बारे गल, पर पहला सुनो एह गीत।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलां तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

जी जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी वंसर उवाने अब जी आर चे संदेश अलग दिन आल से बने हुए दासरी सीना मैं थानू के केड़े केड़े अजे सितारे है ने जिन्हों की जिंदगी शराब के नशे ने खराब करती सी। इस दे विच सब तो पहला नाम यो यो हनी सिंह दा हुंदा है। देखो बॉलीवुड ते पंजाबी सिंगर यो यो हनी सिंह दा शराब ते ड्रग दी लत नाल जूझना उन्हां दे करियर दा सब तो चुनौतीपूर्ण दौर रहा सी, जिस दे कारण ओह साल 2012 तो 2022 दे विचकार ना म्यूजिक इंडस्ट्री तो लगभग गायब हो गए सी। उन्हां ने खुद इस गल नूं स्वीकारिया हैगा है कि ओह शराब ते नशीलियां दवाइयां विच बुरी तरह के नाल डुब चुके सी, जिस नाल जिस तो उन्हां नूं निकलण विच लगभग 8 साल का समा लग गया सीगा।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

जी तो एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवाने वन सर वाने ते जी आर चे संदेश अलग दिन बने हुए इस लिस्ट विच अगला जेड़ा नाम हैगा वह है जी मनीषा कोइराला दा। तो मनीषा कोइराला ने ना एक तो एक फिल्मों विच अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरिया है। उन्होंने बहुत सोहनी अदाकारा की तो बहुत ही सोहनी अदाकारा एक्ट्रेस है अदाकारा हैगी है बहुत ही वधिया एक्टिंग हर फिल्म की है पर उन्होंने शराब की लत नाल बहुत लंबा संघर्ष किया। मनीषा ने खुद खुल के दस्या हैगा है कि एक समय उन्होंने जिंदगी शराब की लत की वजह नाल पूरी तरह के नाल बिखर गई सी। इस लत ने ना सिर्फ उन्होंने सेहत नूं नुकसान पहुंचाया बल्कि उन्होंने करियर ते निजी जीवन ते भी बहुत ही ज्यादा डूंघा असर पाया सी।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत बहुत बहुत बड़ा स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेती रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सन वन एम ते चार छे संदेश अलग दिन बने हुए। अगला जिहड़ा नाम है ना उसनों सुन के तुसी हैरान जरूर हो जाओगे क्योंकि वह भट्ट खानदान के नाल जुड़िया होया है। आलिया भट्ट बिल्कुल भी नहीं है नाम, इस बारे सोचियो ना, ते ना है शाहीन भट्ट, नाम है जी पूजा भट्ट। जी हाँ, पूजा भट्ट का नाम इस लिस्ट विच शामिल है तो सब हैरान हो गए होंगे, पर यह सच है। पूजा भट्ट नूं शराब की लत लग गई सी। पूजा भट्ट ने खुद खुल के दस्या है कि एक समय उन्हां दी जिंदगी शराब की लत की वजह नाल बुरी तरह दे नाल प्रभावित भी हुई सी, जिस तों निकलण दे विच उन्हां नूं काफी टाइम लग गया सी।
1: एक दो गल्लां करनियां सी, थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां, क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सीखियां, तो तुहानूं दस्सणियां मेरा

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Mera naam Dr. Kumar hai aur yahan kuch aisa hai jise janna acha hai. Ek naya National Lung Cancer Screening Program shuru hua hai. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
3: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
4: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ
1: ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆਏ ਹਾਂ
0: ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇਹ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
2: ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਅੱਜ ਮੱਥੇ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ
3: ਸਮੇਟ ਕੇ ਨਾ ਕਰੀਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
4: ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ
5: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
6: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
7: जस्ट मूव फ्रॉम ओवरसीज, स्टार्ट बैंकिंग लाइक अ लोकल विद ANZ, वी आर वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट बैंक्स एंड वी आर चोजन बाय मिलियंस। For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
8: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
9: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
8: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
9: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
8: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
10: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो प्रसवानी वंसर वाले ते जी आर चे संदेश अलग दिन तुम बने हुए हो। इस लिस्ट दे विच अगला नाम बहुत ही खूबसूरत अदाकारा दा है, बहुत कई साल पुराने 80s से 1780s दे जिहड़े दौर दी एक्ट्रेस सी परवीन बॉबी, उन्हों का नाम इस लिस्ट विच शामिल। बॉलीवुड दी दिग्गज एक्ट्रेस सी परवीन बॉबी, पर शराब दी लत ने ना उन्होंने भी काफी नुकसान पहुंचाया है। इस करके उन्होंने करियर ही है जो बर्बाद हो गया सी। पता हो कि परवीन बॉबी अपने समय की हिट एक्ट्रेस थी, उन्होंने बहुत सारिया शानदार फिल्मा दित्तियां ने, उन्होंने खूबसूरती का जलवा तो अज भी बरकरार है।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: तेरे वर्गा आशिक वेख्या न तेरे वर्गी आशिकी।
5: ARY Films and Salman Iqbal present Love the Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love the Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.
6: Hi, this is Amitabh Bachchan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: Hi guys, I'm Madhvi, one of the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: Hi, this is Salman Khan.
10: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
11: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
12: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
13: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
14: से। To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
15: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
16: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
17: Only God can judge me, that right? Only God, baby. Nobody else.
18: ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਏ ਮੋਰੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े पे चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी वन सर वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। इस लिस्ट विच एक बहुत ही दिग्गज नाम भी है जो साढ़े विचकार नहीं है कि पर नाम होना तो है। नाम है जी धर्मेंद्र। हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने खुद स्वीकार किया है कि पीन की लत के कारण उन्होंने करियर के गिरावट जरूर आई है। फिर फरदीन खान का नाम भी इस शामिल है। ड्रग्स और शराब की लत के कारण फरदीन खान नू रीहैब जाना पै गया से जिस नाल उन्होंने करियर नू झटका लग्या। प्रतीक बब्बर नाल भी अजिहा ही होया। राज बब्बर और समिता पाटिल के बेटे प्रतीक बब्बर का करियर भी नशे की लत करके ही प्रभावित होया है। तो ये सारे नाम है जो मेरे अकॉर्डिंग इस लिस्ट में शामिल है।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड ऑल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

हाँ देखो जिन्ने भी नाम मैं हुण दस्से हैगे ने ना वो नो डाउट बहुत ही वधिया कलाकार ने सारे दे सारे बहुत ही ज्यादा शानदार एक्टर्स हैगे ने। तुहानू कौन सब तो ज्यादा पसंद है ते किसदा तुहानू लगता है कि वह जिहड़ा समा उन्हां दा खराब गया हैगा उह नहीं जाणा चाहीदा सी ते जो शराब दे नशे दे विच ना डुबदे ते उस टाइम नूं ना बर्बाद करदे तां अज होर ज्यादा उपर होणे सी। दसो जरूर जुड़ो साडे नाल रेडियो ब्रिसवानी 107.1 FM साडे फेसबुक पेज है जिथे ब्रिसवानी@ब्रिसवानी.com साडी ईमेल आई डी जरिए जिहड़ा भी तुहानू चंगा लगता है तुसीं अपना उपर साडे नाल पता जरूर करते रहा करो। बाकी मैं तो तुहानू यही कहना है जी कि कल करदे हां मुलाकात। रखो अपना ख्याल। सत श्री अकाल।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818, दैट्स 3804-3818।
4: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT, यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट, ब्रिस्बेन।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन, बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
11: दीवाना

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निव्या के साथ। दोस्तों मिड वीक आ गया है या मिड वीक इज हेयर, मतलब कि वेडनेसडे आ गया है। और वेडनेसडे हमारे लिए क्या मायने रखता है इसके बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। या आई नो इट्स नॉट दैट गुड, ये फ्राइडे की तरह हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं लेकर आता है। लेकिन मिड वीक का मतलब ये है कि आपने पहले के दो दिन जो है वो अच्छे से काम कर लिया है भर भर के, अब बाकी के दो दिन जो है वो भी बीत जाएंगे, मतलब ये भी बीत जाएगा, वो वाली सिचुएशन वेडनेसडे के बाद होती है। सो आई होप आप लोग अच्छे से काम कर रहे हो। जी हाँ, अपने गोल्स को पूरा करना, अपने सपनों को पूरा करना, इसमें अलग ही नशा है। सो ट्राई इट एंड लेट मी नो आपको कैसा फील होता है। जी हाँ, एंड व्हेन आई से ट्राई इट मतलब अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम लेके देखिए और फिर मुझे बताइए कि आपको अच्छा फील हुआ, कि आपको फील हुआ कि नहीं, हमने कुछ तो किया है इस लाइफ में। जी हाँ, सो ये फीलिंग आपको तभी आती है जब आप अपने ड्रीम्स के लिए वो पहली सीढ़ी चढ़ते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि उसके बाद की सीढ़ियाँ आप चढ़ जाओगे, लेकिन वो पहली सीढ़ी जो है वही चढ़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे दिमाग में कि करूँ या ना करूँ, अब करूँ या कल करूँ, कल करूँ या परसों करूँ। या सो या अगर आप वो कर लेते हो तो आपको अच्छा फील होगा। इसी के साथ आइए अब बिना देर किए करते हैं एक बहुत ही हेल्दी रिचुअल से शुरुआत, वो है डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। हमारे प्रोग्राम की शुरुआत के लिए ये रिचुअल बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि हम आपको बताते हैं कैसे इस दुनिया की जद्दोजहद के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हो ये डीप ब्रेथ एक्सरसाइज के साथ। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि मुझे इसकी जरूरत है अभी, क्योंकि आई लव माई प्रोग्राम, आई लव यू गाइज, सो ऑफकोर्स मुझे तो अपना प्रोग्राम करते हुए बहुत मजा आता है। लेकिन अगर आपको काम करना है, आपको किसी ऐसी जगह जाना है जहां आप नहीं जाना चाहते, किसी ऐसे इंसान से डील करना है जिससे आप नहीं करना चाहते, या फिर अपने बॉसेस या यू नो एनीथिंग, तो आप ये कर सकते हो एंड यू नो व्हाट, यू आर गोना फील रियली गुड। सो आइए क्या बात है, इसी के साथ अब करते हैं किसी प्रोग्राम की शुरुआत। प्रोग्राम की शुरुआत बहुत ही बढ़िया से गाने के साथ। प्रोग्राम तो ये है पर गाना बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि खूबसूरत गाना नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। सो मैं जो पहला गाना आपके लिए प्ले करने वाली हूँ वो बहुत ही खास है, क्योंकि उसका नाम है मौला मेरे आंखें तेरी। आई डोंट नो बट देयर इज समथिंग अबाउट दिस सॉन्ग जो कि बहुत ही ज्यादा खास है। अब ये कोई बहुत फास्ट गाना नहीं है, डांसिंग ट्रैक नहीं है, बट दिस सॉन्ग इज जस्ट वे टू ब्यूटिफुल। सो ऑफकोर्स वी आर गोना स्टार्ट विद दिस एंड ऑफकोर्स फिर उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे, गपशप करेंगे, बहुत सारा धूम धड़ाका करेंगे, लेकिन पहले ये खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

0: Last minute packing panic. Leaving for Paris tomorrow, but before that, a...
1: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो गया है मौसम के बारे में बात करने का। जी हाँ, अभी प्रोग्राम की शुरुआत हुई और आपको तो पता ही है, प्रोग्राम की शुरुआत में ही हम मौसम के बारे में बात करते हैं, वेदर के बारे में बात करते हैं, टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, आज के और साथ में अगले दो दिन के। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं मौसम की, आज के टेम्परेचर के साथ। सबसे पहले 22 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। जी हाँ, 22 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। अगर बात की जाए अभी की तो 22.1 डिग्री सेल्सियस है और फील आपको हो रहा है 21.1 डिग्री सेल्सियस के करीब। मैंने आपको कहा था कि आपको भर भर के धूप मिलने वाली है आज, तो आई होप आपने उस धूप का मजा लिया हो। जी हाँ, उस सनशाइन का मजा लिया हो, क्योंकि वो सच में जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। इसी के साथ जो बारिश की सिचुएशन थी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो तो ना के बराबर है। एयर क्वालिटी है एकदम फेयर और ये है आज का मौसम। अब बात करते हैं कल की, तो कल जो है वो फिर से बदला आएंगे, बारिश आएगी, क्योंकि 60% चांसेस मैं देख पा रही हूँ, 1 to 5 mm बारिश मुझे दिख रही है विद 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फ्राइडे को ये चांसेस और भी बढ़ रहे हैं, 60 to 80 हो जाएंगे, यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ यहाँ पर आपको बारिश मिलने वाली है देखने को 80%। जी हाँ, तो ये है मौसम का हाल। और जैसे मैंने कहा कि आज जो है वो आपको भर भर के रोशनी जो है, भर भर के धूप मिलने वाली थी, और फिर उसके बाद आपको जो है अब स्ट्रगल करना पड़ेगा थोड़े दिन धूप के लिए, क्योंकि मैं काफी दिन सिर्फ और सिर्फ बारिश ही देख पा रही हूँ। इनफैक्ट अगले मुझे सारे के सारे दिन बारिश दिख रही है, सब के सब दिन। बीच में थोड़े बहुत चांसेस उसके कम हो सकते, थोड़ी कम हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है, बट बारिश मुझे दिख ही रही है। जी हाँ, सो इसी के साथ मैं आपको यही कहूंगी कि अच्छे से बारिश का भी मजा लीजिए। आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा, ये ठंड की बारिश है, गर्मी की नहीं है, हाउ कैन वी, आई नो आई नो आई नो, सो फिर भी मजा लीजिए, क्योंकि नेचर है भाई, नेचर की हर एक चीज खूबसूरत होती है और हर एक चीज अपना एक पर्पस जो है वो सर्व करती है। सो उस पर्पस को सर्व करने दीजिए और थोड़ा कोजी कोजी होकर रहिए अंदर। अगर बाहर धूप नहीं है तो आप अंदर कोजी होकर रह सकते हैं, एंड आई थिंक दैट इज अ गुड गुड आइडिया। इसी के साथ यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, तां जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
4: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend, or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आर्शेनिविया के साथ। दोस्तों, मौसम की बात हो गई, प्रोग्राम की शुरुआत भी हो गई, अब जरा आपकी फरमाइशों की बात हो जाए। जी हाँ, उन्हीं फरमाइशों की बात हम कर रहे हैं जिनकी वजह से हमारे प्रोग्राम में ऐसी वाइब बनती है, ऐसी वाइब बनती है कि जो वाइब बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में भी नहीं आ सके। क्यों? क्योंकि आपकी फरमाइशें जो हैं वो एकदम लाजवाब हैं, काबिले तारीफ है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से अपने फेवरेट गानों के साथ आ जाइए, हिस्सा बन जाइए हमारे इस प्रोग्राम का अटूट। और उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको अपना फोन उठाना है, नंबर डायल करना है, और वो नंबर क्या है? वो नंबर है +9182888-71701। आई रिपीट, +9182888-71701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और आप जब तक भेज रहे हो, हमारी तरफ से एक और बढ़िया सा गाना आप सबके लिए जो कि जबरदस्त है, अगेन जबरदस्त है। और इसी के साथ हम आगे की ओर बढ़ेंगे, लेकिन अगेन आपको याद रखना है कि आपको अपनी फरमाइश हम तक जल्दी पहुंचानी है।

जी हाँ दोस्तों, आप जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, आपको मूव करना पसंद नहीं है, आपको लेजीगिरी करना पसंद है, मतलब काम पे आप अपनी सीट पे बैठे रहते हो और उसके बाद आप घर पर आके बैठे रहते हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। जी हाँ, ऐसे नहीं चलेगा। और आपको इंस्पायर करने के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ एक बड़ी ही फनी लेकिन बहुत ही पते की वीडियो के बारे में हो रही है। जी हाँ, एक कैट जो कि लिटरली वायरल हो गई है क्योंकि वो जिम जाती है, ट्रेडमिल को ऑन करती है और बड़े अच्छे से फिर ट्रेडमिल पे रन करती है, वॉक करती है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपने सही सुना। अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा, मतलब ठीक है, इंसान भी करते हैं, तो कैट से हमें क्या इंस्पिरेशन मिलने वाली है? वेल, इंस्पिरेशन यही मिलेगी कि यहाँ के बिल्लियां भी जाके ट्रेडमिल पे वॉक कर रही है, रन कर रही है। हम क्यों नहीं कर रहे, आप क्यों नहीं कर रहे? दिस इज द हाई टाइम। मतलब ये बिल्ली जो है वो इतनी ज्यादा स्मार्ट है कि अपने आप जाती है, आप ट्रेडमिल को ऑन करती है, बड़े ही अच्छे से सेट करती है उसे जितना चाहिए होता है उसकी स्पीड, और फिर उसके बाद उतरती है और उस पर वॉक करना शुरू करती है धीरे धीरे धीरे, और फिर रन करना शुरू करती है। एंड देन यू विल बी लाइक ओके, बट बिल्लियों के घूमने और भागने के लिए तो बहुत सारी जमीन है बाहर, और मतलब जगह है, वो अंदर क्यों कर रही है? वेल, वो अंदर इंसानों को ही तो इंस्पायर कर रही है। अगर बाहर घूमेगी, बाहर भागेगी, तो आप लोग बोलोगे कि वो तो अपनी नेचुरल हैबिटेट में है, वो तो ऐसा करती है, लेकिन जिम के अंदर लोगों को इंस्पायर कर रही है। इन केस आप एक्सरसाइज नहीं करना पसंद करते हो, इस बिल्ली से इंस्पिरेशन लीजिए और कीजिए, बिकॉज अभी नहीं तो कब? एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, हमारी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए, जैसे मेडिटेशन मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है, वैसे ही भागना, एक्सरसाइज करना, जुम्बा, योगा, ये सारी की सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर आप चाहते हो हसीन लगना, अगर आप चाहते हो हेल्दी रहना, तो ये तो करना पड़ेगा। और ये बिल्ली आपको लिटरली इंस्पायर कर रही है। वेल, मुझे तो बहुत ज्यादा इंस्पायर कर दिया। मैं भी अब भागने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा, प्रोग्राम पूरा करके जाना है, ऐसे ही मत भाग जाना। जी हाँ, ठीक है ठीक है, ये तो मैं पूरा करके जाऊंगी, डोंट वरी। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो, जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवें घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: The Total Focus Group Australian International Masters 2026 hosted by Queensland Fiji Football Association QFFA from 1st July till 5th July 2026 at the iconic Olympic FC Stadium in Yeronga, Brisbane with 32 teams already confirmed participating across Fiji, Australia, New Zealand, Canada and United States. Festival atmosphere for the whole family, live entertainment, kids play zone and food stalls. For more information, contact President Jitendra Prasad, Chairman Imroz Mohammed and Secretary Aman Kumar, connecting the community. And a big thank you to our major sponsor, Total Focus Group.
0: Navi Queensland Sarkar 4000 hectare to vivad jameen rihayish layi uplabdh karwa rahi hai ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
2: ਓਏ ਰਾਹੁਲ, ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
3: ਓ ਯਾਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी, बहुत ही बड़े स्पोर्ट्स पर्सन और कहें भगवान ऑफ फुटबॉल का जन्मदिन है तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, मेसी। कल ही बात कर रहे थे हम उनके बारे में और आज हम फिर से उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। एंड व्हाट अ बर्थडे, 17 गोल्स इन फीफा वर्ल्ड कप। जी हाँ, मतलब वो लेजेंड बन चुके हैं, ऑलरेडी वो लेजेंड थे। और इससे पिछला फीफा वर्ल्ड कप जब उन्होंने जीता था अर्जेंटीना के लिए तो पीपल वर लाइक कि ओके, नाउ मेसी जो है वो रिटायर हो गए हैं। लेकिन सबको ऐसा लगा, इवन मैंने भी ये सोचा कि वो रिटायर हो गए। उन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी थी लेकिन जैसा वो सारा माहौल हुआ था उससे यही लग रहा था कि ये जो है वो पक्का इन्होंने अब रिटायरमेंट जो है वो लेनी है। बिकॉज इट वॉज द पीक ऑफ हिज करियर, मतलब वो ऑलरेडी लेजेंड है। उन्होंने अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप जिता दिया था और उसके बाद एवरी वन वॉज थिंकिंग कि हाँ ठीक है, दिस इज द बेस्ट एंडिंग और फेयरवेल एनी वन कैन एवर हैव। बट देन कुछ वक्त बाद जो है वो कहते हैं कि नहीं, वो रिटायर नहीं हुए हैं बल्कि वो वापसी करेंगे और अच्छे से वापसी करेंगे, यानी कि वो फीफा वर्ल्ड कप में फिर से अर्जेंटीना को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो पीपल वर लाइक कि ओह माय गॉड, बिकॉज पीपल लव मेसी लाइक एनीथिंग, मतलब वो मेसी को भगवान मानते हैं। इनफैक्ट कुछ वक्त पहले मेसी जो है वो इंडिया गए थे और वहां पर उनका बहुत बड़ा स्टैचू भी बनाया गया, बहुत ही बड़ा स्टैचू। ऑफकोर्स उस स्टैचू को अब गिराया जा रहा है और उसको जो है वो हटाया जा रहा है वहां से, क्योंकि वो सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है. बट उसके अलावा पीपल वेंट क्रेजी व्हेन ही वेंट टू इंडिया. सो ऑफकोर्स when we talk about India or any other country, Messi के fans की जो है वो कमी नहीं है. Now आज है उनका जन्मदिन, तो सबसे पहले उनको जन्मदिन की मुबारकबाद. जी हाँ, Messi आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से, रेडियो ब्रिज़वानी की तरफ से. मुझे पता है कि ये बर्थडे विश जो है वो मेरे साथ कितने और लोग आपको करना चाहेंगे, एंड वो अपने अपने तरीके से कर भी रहे होंगे. हम यही कहेंगे कि ये फीफा वर्ल्ड कप भी आप जीतो या नहीं जीतो, वेल ऑफ कोर्स दैट इज डेफिनेटली आपकी काबिलियत पर है और आप बहुत ही ज्यादा काबिल हो और ऐसा लग रहा है कि आप जीत जाओगे. बट मैं यही कहूंगी कि डेफिनेटली आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो इस वर्ल्ड कप में. एंड इनफैक्ट अगर जो आपके फैंस चाहते हैं, जो सब चाहते हैं, वो तो आपको जिताना ही चाहते हैं. सो अर्जेंटीना फिर से जीते, यही हम कहेंगे, लेकिन उन फैंस के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहती थी. बट द थिंग इज कि ऑफकोर्स एवरी वन, लिटरली योर फैंस वॉन्ट्स टू से दैट, सो ऑफकोर्स मैं उनकी तरफ से ही आपके लिए कह रही हूँ. और इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे, हेल्दी आप रहो और इंटर मियामी के साथ आप बने हुए हो, सो ऑफकोर्स क्लब मैचेस में तो आपको देखना हमें मिलता ही है, लेकिन यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप में हमें अगली बार आपको देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा वो भी जल्द ही अपने फैंस को बताइएगा. एंड या ऐसे ही खुश रहिए, ऐसे ही सक्सेसफुल होते रहिए, ऐसे ही रिकॉर्ड्स बनाते रहिए, दैट्स ऑल वी वांट. एंड या आपके फैंस के तरफ से मैं कहना चाहूंगी कि फीफा भी आप जीत जाएं, यही है हमारी दुआ. सो या थैंक यू सो मच हमें एंटरटेन करने के लिए. एंड गेस व्हाट माय लिसनर्स, मेसी के फैंस जो हैं वो लिटरली बहुत सारी एज ग्रुप से आते हैं. अभी जब वो खेल रहे थे मैच, तो एक 100 ईयर्स की लेडी वहां पर बैठी हुई थी अर्जेंटीना की, उन्होंने जर्सी जो है वो पहनी हुई थी, शी वॉज लिटरली चेयरिंग फॉर मेसी और उन्होंने मेसी के लिए जो है वो पूरा होर्डिंग पकड़ा हुआ था, पूरा जो पोस्टर पकड़ा हुआ था, खुद उन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि वो 100 साल की. और वहीं कुछ देर बाद एक छोटा सा बच्चा जो कि लिटरली अर्जेंटीना की जर्सी में बैठा हुआ था, जो कि अभी टोडलर भी नहीं था. सो ऑफकोर्स मैंने कहा ना, मेसी का जो फैन ग्रुप है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा जो है वो वास्ट है. सो या ये फीफा वर्ल्ड कप के लिए बहुत अच्छा हो, यही हमारी दुआ है. एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन. यहाँ पर अब मेसी की बात हुई है, फीफा की बात हमने कर दी, तो अर्जेंटीना का फीफा एंथम जो है वो प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही जबरदस्त है. मतलब ये मेरी फीड में इतना ज्यादा आ रहा है कि मैं आपको चाहूंगी कि आप भी इसे सुनो, क्योंकि अगर आप इसे सुनोगे ना तो यू विल बी लाइक ओ माय गॉड. मतलब अगर आप अर्जेंटीना के फैन नहीं हो, मेसी के फैन नहीं भी हो, यू स्टिल वॉन्ट्स टू चेयर हिम अगर आप ये एंथम सुनोगे तो.

जी हाँ, ऑफ कोर्स मेसी की वजह से हमने अर्जेंटीना का फीफा एंथम प्ले कर दिया है, लेकिन हम सिर्फ फिर भी यही चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया फीफा वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि हम तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, राइट? सो ऑफ कोर्स ये वाली बात तो हमेशा रहेगी, बट मेसी के लिए या वी आर गोना डू दैट बिकॉज मेसी डिजर्व्स दैट। सो या इसी के साथ एक और फरमाइशी गीत मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, पहला फरमाइशी, एक और नहीं, पहला फरमाइशी गीत मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। और ये फरमाइशी गीत आया है हमारी प्यारी लिसनर अमला जी की तरफ से। जी हाँ, बहुत ही खास लिसनर है अमला जी, उन्होंने किया है ये फरमाइश। गाने का नाम है दिल करने लगा है प्यार। ओहो, क्या बात है, दिल करने लगा है प्यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। प्यार करना इज अ गुड थिंग, बशर्ते वो प्यार आपको मिलना भी चाहिए, क्योंकि अगर गड़बड़ हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाती है, सब गड़बड़ हो जाती है। प्यार मिले तो बहुत अच्छा है, ना मिले तो गड़बड़ बहुत ज्यादा है। सो या थैंक यू सो मच हेमलता जी एंड रफी साहब का ये गाना एंड ये खूबसूरत सी फरमाइश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमला जी आपका। और ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए, ये रहा आपका ये गाना।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ वर्ल्ड के पहले ट्रिलियनर एलन मस्क लुढ़क गए हैं। जी आप लोग बोलोगे कि क्या वो ट्रिलियनर नहीं रहे? वेल वेल वेल, 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा का घाटा हुआ है। मतलब स्पेसएक्स का जो आईपीओ है, जो कि लिटरली बहुत ज्यादा खतरनाक और धुआंधार तरीके से आया था और उसने एलन मस्क को दुनिया का पहला ट्रिलियनर बनाया था, उनको स्पेसएक्स ने की वजह से जो है वो 350 से 400 बिलियन डॉलर का घाटा हो गया। बट ही स्टिल अ बिलियनर। या एग्जैक्टली। आई मीन इमेजिन, ही हैज सो मच वेल्थ कि ही लॉस्ट 350 to 400 बिलियन एंड यहां पर ही स्टिल अ बिलियनर। ट्रिलियनर, नॉट अ बिलियनर, ट्रिलियनर। मतलब बिलियनर वाली बात तो बहुत छोटी हो गई उनके लिए। सो एलन मस्क की नेटवर्थ जो है वो ड्रॉप हो गई है 350 से 400 बिलियन, क्योंकि स्पेसएक्स का जो शेयर्स हैं वो नीचे लुढ़क गए हैं 31% फ्रॉम देयर पीक, जो कि आईपीओ डेब्यू में उनको वो पीक मिली थी, और लिटरली 900 बिलियन जो है वो मार्केट वैल्यू से गायब हो गया। 900 बिलियन डॉलर। या आप लोगों को लग ही रहा होगा कि वाह, मतलब जब आने वाला था आईपीओ तो एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट, यू नो एवरीवन वाज सो एक्साइटेड अबाउट इट। जब आईपीओ आया तो भी बड़े धुआंधार तरीके से आया, लेकिन उसके बाद भी जो है वो ऐसा हो गया। अब उनकी जो नेटवर्थ है वो 1.45 ट्रिलियन से 1.1 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। जी हाँ, मतलब ही इज स्टिल अ ट्रिलियनर। मतलब वो अभी बिलियनर की उसमें नहीं पहुंचे हैं, ही इज स्टिल अ ट्रिलियनर। द थिंग इज कि यहां पर आईपीओ जो है वो बड़ा ही धुआंधार हुआ था, लेकिन ये मार्केट जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल है। मतलब आज आपको राजा बना सकती है, कल आपको क्या बना सकती है, आई एम नॉट गोना इवन से दैट। सो या, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट जो है वो हमेशा से बहुत ही यू नो रिस्की बिजनेस रहा है, और ये तो सबसे बड़ा प्रूफ है। मतलब आप लोग बोलोगे कि डोनाल्ड ट्रंप तो बड़े ही अच्छे से कह रहा है कि ओह यू नो वॉच द ऑयल इज फ्लोइंग, दिस शेयर मार्केट इज बूमिंग, दिस दैट ऑल दैट जैज। यार डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी कहता है क्योंकि वो मैकडोनल्ड खाता है। बट द थिंग इज कि यहां पर सच में ऐसा हो रहा है, वो मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, वो नीचे जा रही है। लिटरली स्पेसएक्स को इतना बड़ा धक्का लगा है एंड यू कैन ऑलरेडी इमेजिन। बट द थिंग, द मेन फैक्ट कि मतलब इतना ज्यादा पैसा गायब हो गया, इतना बड़ा नुकसान एलन मस्क को भी हो गया, लेकिन फिर भी वो अभी भी ट्रिलियनर है। जी हाँ, बिलियनर की कैटेगरीज में लुढ़के नहीं है, वो अभी ट्रिलियनर ही है। आप इमेजिन कर सकते हो द अमाउंट ऑफ वेल्थ दिस मैन हैज। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त होने वाला है।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: Hi, this is Amitabh Bachchan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: Hi, this is Salman Khan.
9: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
10: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
12: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
13: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
14: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
15: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
16: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे नेविया के साथ। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको सुन के आपका सर चकरा सकता है, सो ध्यान से बैठ जाइए। अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि सुनना जरूरी है चकराने के लिए। सो हुआ कुछ ऐसा है कि रोबोटिक और AI से डर कॉरपोरेट सेक्टर वालों को, बहुत सारे फील्ड के लोगों को लग रहा था, मतलब उनको लग रहा था कि हमारी फील्ड में जो है वो AI या रोबोट्स हमें रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन एक फील्ड ऐसी थी जिसमें कभी भी नहीं लगा था किसी को कि इस फील्ड में रोबोट्स या AI कभी आ सकते हैं, एंड दैट वाज बेगिंग, यानी कि जब लोग बेग करते हैं, मतलब भिखारी वाली फील्ड में किसी को नहीं लगा था कि कभी भी भिखारियों को या लोगों को जिनको जरूरत होती है पैसे की, जब वो बेग करते हैं, उनको भी रोबोट्स और AI रिप्लेस कर सकते हैं। या आपने सही सुना, सही सुना। सो रॉबर्ट्स और एआई हम सबके पीछे ही नहीं पड़े बल्कि बेचारे भिखारियों के पीछे भी पड़ गए हैं। जी हाँ, अब यहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि चेंगदू चाइना का है। चेंगदू इज अ प्रोविंस जो कि चाइना में है। वहां पर एक ह्यूमनॉइड रॉबर्ट जो है वो साइड में रोड के साइड में बैठा हुआ है और वो बड़े ही अच्छे से वो जो भिखारी वाले जो जब बेग करता है कोई इंसान तो जो वो हाथ से जेस्चर बनाता है वैसे से जेस्चर वो बना रहा है और वो एक कटोरा उसके आगे रखा हुआ है जिसमें वो पैसे जो है लोग उसको डाल के जा रहे हैं। मतलब अब रॉबर्ट जो है वो भीख भी मांग रहे हैं या इंसान भीख मांग रहे हैं, ये नहीं मांग रहे लेकिन रॉबर्ट्स मांग रहे हैं। मतलब एक ऐसी फील्ड जिसको कभी भी खतरा नहीं था रॉबर्ट्स और एआई से, अब उनको भी खतरा हो गया। मतलब वो भी बोल रहे होंगे कि एश ये एआई को कोई यहां से लेके जाओ, मतलब ये तो हमारा भी एम्प्लॉयमेंट खा जाएंगे। जी हाँ, सो वो जो रॉबर्ट है ह्यूमनॉइड रॉबर्ट जो कि चाइना में भीख मांग रहा था रोड के साइड में, वहां पे वो बड़े अच्छे से कटोरा उसके आगे रखा हुआ था, सो जो लोग कैश देना चाहते थे वो कटोरे में डाल के जा रहे थे और जो लोग कैश नहीं देना चाहते थे जिनके पास कैश नहीं था के लिए QR कोड का आगे पोस्टर भी रखा हुआ था। सो QR कोड का पोस्टर भी कटोरे के साथ में रखा हुआ था, इन केस इफ यू डोंट हैव कैश यू कैन पे इन यू नो डिजिटली। या दैट्स व्हाट दैट ह्यूमनॉइड रॉबर्ट सेड। वेल ऑफ कोर्स ह्यूमनॉइड रॉबर्ट अगर भीख मांग रहे हैं तो डिजिटल पेमेंट्स तो बनती हैं, राइट? मतलब आप अगर कैश नहीं लाए हो तो डिजिटल पेमेंट्स होना जरूरी है क्योंकि लेट्स बी रियल, इट्स अबाउट ह्यूमनॉइड रॉबर्ट, इट्स नॉट अबाउट एनी पर्सन, इट्स अबाउट ह्यूमनॉइड रॉबर्ट। आई डोंट नो व्हाट टू से टू दैट, बट आप मुझे बताइए आपको कैसा फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि माय गॉड ये रोबोट और एआई तो सबके पीछे पड़ गए, मतलब हर जगह पे बेचारे भिखारियों को भी नहीं छोड़ा। ओ माय गॉड, क्या कहूं मैं। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा कहाँ की ओर। वेल ऑफ कोर्स हमारे फेवरेट सेगमेंट की ओर। आप लोग बोलोगे कि हैं, ट्रम्प रोस्टिंग सेशन पहले ही शुरू हो गया, ओल्ड इज गोल्ड भी शुरू हो रहा है, क्योंकि यही दो हमें सबसे ज्यादा पसंद है। किसके बारे में बात हो रही है निव्या? वेल, हमारा फेवरेट खबरों वाला सेशन भी तो है। आप लोग बोलोगे खबरों वाला सेशन किसका फेवरेट होता है? वेल, खबरों वाला सेशन भी अच्छा होता है, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ बताता है दुनिया भर के बारे में। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूरोप की गर्मी से। जी हाँ, यूरोप की गर्मी ने तो मतलब धमाल मचा दिया। 18 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक यूरोप में। जी हाँ, हीट वेव से स्कूल बंद हो गए हैं, कॉलेजेस बंद हो गए हैं, और पता नहीं क्या क्या हुआ है। सो आइए जरा विस्तार में जानते हैं। यूरोप में हीट वेव का कहर, कई देशों में रेड अलर्ट जारी। जी हाँ, यूरोप में हीट वेव का कहर जारी है। इस भीषण गर्मी से सबसे अधिक प्रभावित देशों में फ्रांस, स्पेन और इटली शामिल है। स्पेन में कुछ जगहों पर तापमान 40 डिग्री से ज्यादा तक पहुंच गया। वहीं मंगलवार को फ्रांस में औसत तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह जून महीने का अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। फ्रांस की मौसम एजेंसी मेटियो फ्रांस के अनुसार सोमवार को देश की अब तक की सबसे गर्म जून की रात भी दर्ज की गई, जब न्यूनतम औसत तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रहा। एजेंसी के मुताबिक देश के आधे से अधिक हिस्से में रेड अलर्ट जारी है। जी हाँ, मतलब रेड अलर्ट जारी है। और आप सोचिए, यूरोप के लोगों को ठंड की आदत ही, गर्मी की आदत ही नहीं है, उनको तो ऐसी गर्मी मिल रही है कि वो बेचारे हिल गए हैं। मतलब वो सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। वेल, इट्स बिकॉज ऑफ द सुपर एल नीनो। मैंने पहले भी बताया था कि जब पैसिफिक में टेम्परेचर बढ़ता है, तभी आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी, कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश, और कहीं पर बहुत ज्यादा ठंड। अब यहां पर आपको बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है, ऐसे में पैसिफिक का टेम्परेचर एल नीनो, दैट इज सुपर एल नीनो। एंड बाय द वे, सुपर एल नीनो एक ऐसी कंडीशन है जो कि अभी तक हिस्ट्री में सिर्फ चौथी बार हुई है। चौथी बार, लाइक यू कैन इमेजिन, हमने जब से मौसम को स्टडी करना शुरू किया है, इन सब चीजों को स्टडी करना शुरू किया, तब से अभी तक सिर्फ और सिर्फ चौथी बार ऐसा हो रहा है जब ये चीज हमें देखने को मिली है। सो या आई होप इंसान इससे कुछ सीखे और नेचर के साथ छेड़छाड़ करना बंद करें। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि बेहद ही ज्यादा खूबसूरत है, और आई डोंट नो, बट ये गाना मेरे दिमाग में चल रहा था, सो आई रियली वॉन्टेड टू प्ले इट फॉर यू। गाने का नाम है तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। और अगर आपने सड़क मूवी नहीं देखी है ना, तो आपको जरूर देखनी चाहिए। यहाँ सड़क 2 की बात नहीं मैं कर रही हूँ, जिसमें अजीबो गरीब धमाल मचाया। आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल सड़क, द फर्स्ट वन, द ओरिजिनल वन, जिसमें के लिटरली संजय दत्त और पूजा भट्ट की केमिस्ट्री जो है वो एकदम खतरनाक है। सो ये गाना उसी मूवी का।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
5: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
4: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
5: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है, और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
4: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
5: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
4: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
5: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है, भारत में नंबर +91 8448381360 है, और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
6: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 107.1 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, खबरों की बात हो रही है और अब जरा बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जो कि लिटरली सब्जेक्ट बना हुआ है हमारी कॉन्वर्सेशन का सिंस 4 months, जो यहाँ 4 महीने से हमारी ऑफकोर्स कॉन्वर्सेशन का सब्जेक्ट बना हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे 11,000 नाविकों को बाहर निकालेगा संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO खाड़ी क्षेत्र में फंसे 11,000 से अधिक नाविकों को निकालने की तैयारी कर रहा है। ये नाविक अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच हुए युद्ध की वजह से वहां फंस गए थे। जी हाँ, IMO के महासचिव आर्सोनिया डेमगुएंज ने कहा कि ये बड़े पैमाने का अभियान ईरान, ओमान, अमेरिका और क्षेत्र के अन्य तटीय देशों के सहयोग से किया जाएगा। पिछले हफ्ते एक अंतरिम समझौता MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे ताकि संघर्ष समाप्त हो सके, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच अभी भी कुछ चीजों को लेकर विवाद है। अमेरिका ने कहा है कि इस MOU में ये गारंटी शामिल है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA द्वारा की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान ने पूरी तरह और अंतिम रूप से भविष्य में उच्च स्तरीय परमाणु निरीक्षणों को स्वीकार कर लिया है, इससे परमाणु ईमानदारी सुनिश्चित होगी। ट्रंप की पोस्ट से थोड़ी देर पहले ही ईरान ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र की ये निगरानी संस्था उन परमाणु स्थलों का निरीक्षण नहीं कर पाएगी जिन्हें पिछले साल अमेरिका और इसराइल ने बमबारी करके नष्ट कर दिया था। इसके जवाब में एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ईरानियों ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के अवशेषों पर IAEA निरीक्षणों पर सहमति दी है। ईरानी शासन अपने नागरिकों के लिए जो कहना है वो कहे। जी हाँ, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशकियान ने मंगलवार को पाकिस्तान दौरे के दौरान कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ भी अपनी रक्षा क्षमताओं पर कभी बातचीत नहीं करेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने पेजशकियान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बैलिस्टिक मिसाइलों पर कोई चर्चा नहीं हुई है, ये बिल्कुल भी चर्चा का विषय नहीं था।

तो मुसीबत है किसी और की, तुझे भुगत रहा कोई और है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर ट्रम्प, मिस्टर ट्रम्प। जी हाँ, तो आपको पता चली गया होगा कि ट्रम्प रोस्टिंग सेशन जो है वो शुरू हो गया। अब मुसीबत तो ये इंसान वैसे अमेरिका की है, अमेरिका के लोगों की है, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें बिठाया वहां पर, लेकिन भुगत तो पूरी की पूरा दुनिया रही है ना, लिटरली। सो इसीलिए मैंने उनके लिए गाना बनाया। जी हाँ, आई नो यू डोंट लाइक माई सिंगिंग, बट यहाँ पर तो चलता है, राइट? मतलब आप फन कर सकते हो, हंस सकते हो। सो यहाँ पर अब जरा बात कर लेते हैं मिस्टर ट्रम्प के बारे में, जिनकी मुसीबतें बढ़ती बढ़ती और बढ़ती ही जा रही है। जी हाँ, तो ट्रम्प को झटका गया है क्योंकि रिपब्लिकन के नियंत्रण वाली सीनेट ने ईरान युद्ध के खिलाफ जो है वो एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। जी हाँ, आपने सुन लिया। जी हाँ, अमेरिकन सीनेट ने जंग से जुड़े एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग रोकने या सैन्य कार्रवाई जारी रखने से पहले कांग्रेस की स्वीकृति लेने का निर्देश दिया गया था। ट्रंप के लिए इससे बड़े झटके के तौर पर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि अमेरिकी सीनेट पर उनकी रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण है। मंगलवार को हुए मतदान यानी कि वोट में कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया। माना जा रहा है कि ईरान युद्ध के लिए डेमोक्रेट्स के साथ साथ रिपब्लिकन सदस्यों में भी नाराजगी है, इसी वजह से ऐसा हुआ। यह प्रस्ताव 50-48 मतों से पास हुआ। यही प्रस्ताव जून में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी पारित किया गया था, जहां 4 रिपब्लिकन सांसदों ने सभी डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर इसे 215 से 208 मतों से मंजूरी दी थी। हालांकि यह प्रस्ताव मुख्य रूप से प्रतीकात्मक है क्योंकि कांग्रेस के दोनों सदनों से पारित होने के बावजूद इसे राष्ट्रपति ट्रंप के सामने विचार के लिए नहीं भेजा जाएगा और इसका कानूनी रूप से कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं होगा। अब आप लोग बोलोगे कि ठीक है, ये तो ट्रंप की मुश्किलात बढ़ रही है। अच्छा, अब ट्रंप ने कहा क्या है इसके लिए, जरा आइए आपको वो बताते हैं। सो ईरान युद्ध के खिलाफ जो है वो उन पर प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया, उनके खिलाफ वोटिंग जो है वो हो गई है। सो ट्रंप ने यहां पर कहा है कि मैंने ईरान को लगभग हरा ही दिया था, लगभग हरा ही दिया था। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। वह हार मानने को तैयार था और हमें लगभग सब कुछ देने को राजी था, लगभग सब कुछ हार मानने को तैयार था, लगभग सब कुछ देने को तैयार था। दशकों में पहली बार वो अमेरिका और उसके राष्ट्रपति यानी मेरा बहुत सम्मान कर रहे थे। ओह माई गॉड, सम्मान! मतलब जितनी खिल्ली मिस्टर ट्रंप आपकी उड़ी है उसको सम्मान कहते हैं, तो आपके सम्मान और अपमान के बीच का जो डिफरेंस है वो हिला हुआ है। आई नो मैकडी खाकर ऐसा हो सकता है। आई मीन यू नीड टू ईट हेल्दी टू थिंक समथिंग गुड और थिंक समथिंग बेटर एंड हेल्दी। सो अगर आप खाओगे ही बर्गर तो कहाँ से निकलेगा चर्गर। जो यहाँ आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा तुम्हारी पहेलियाँ और ये बड़ी फनी है। वेल, फनी तो है क्योंकि यहाँ पे हमें फन की जरूरत है। सो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि लेकिन तभी अमेरिकी सीनेट ने वॉर पावर्स एक्ट पर एक बेवकूफ़ी भरे समय में और बेकार वोटिंग करवा दी। अब यू नो व्हाट द फनी थिंग इज कि जब भी ऐसा कुछ होता है ना, ट्रंप की इरिटेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब उनका दिल करता है कि सबसे पहले तो मैं ये अपने सारे जो सीनेट हैं इनको पकड़ के अच्छे से धो लूं, क्योंकि इनको धोऊंगा नहीं तब तक ये मेरे खिलाफ वोट करते रहेंगे। जब तक ये मेरे खिलाफ वोट करते रहेंगे मैं कहां जाऊंगा। मतलब यू नो व्हाट, मीडिया नैरेटिव सेट करता है। जी हाँ, अब ऐसे में ईरान अमेरिका से हारा है या नहीं हारा है, एंड यू नो व्हाट द फनी थिंग इज कि यहाँ पर ट्रंप बड़े ही अच्छे से कह रहे हैं कि यू नो व्हाट, दशकों में पहली बार वो अमेरिका और राष्ट्रपति, उसके राष्ट्रपति का सम्मान कर रहे थे, रिस्पेक्ट कर रहे थे। प्लीज मिस्टर ट्रंप, नहीं कर रहे थे वो। पहली बार वो हार भी मानने के लिए तैयार थे? अरे कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। इनफैक्ट ईरान की जितनी भी एम्बेसीज हैं पूरे वर्ल्ड में वो एक एक करके इनको धो रही थी, मिस्टर ट्रंप को धो रही थी। कोई यहां से धो रहा था, कोई वहां से धो रहा था, कोई पीछे से धो रहा था, कोई आगे से रहा था, लेकिन ये इंसान इतना धुल के भी अभी भी कह रहा है यू नो व्हाट, दे वर गोना गो, और वो तो हार मानने वाले थे, वो तो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। अरे आपकी रिस्पेक्ट कोई नहीं करता। मुझे तो ऐसा लगता है इनके खुद के बच्चे भी इनके रिस्पेक्ट नहीं करते। कोई भी ताजमहल घूम रहा था, कोई शादी कर रहा था, पर दे वर लाइक ये इंसान कुछ भी करता रहेगा, हम अपनी जिंदगी में आगे के काम करते हैं, क्योंकि ये तो चलता रहता है, ये इंसान चलता रहता है। जी हाँ, सो यही सब हुआ है। अब उन्होंने ये भी कहा है कि इससे दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। मुझे तो लगता है अमेरिका से सबसे बड़ा आतंकवादी देश इस दुनिया में कोई नहीं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर हमें बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ कल ही की बात है। मैं सोशल मीडिया चला रही थी और मैंने वहां पर कुछ पढ़ा, एंड जब मैंने उसे पढ़ा तो उसके बाद अब मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ और मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। सो इट्स अ फनी थिंग, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली अ फनी थिंग। मतलब जिस इंसिडेंट के बारे में है ये, वो तो बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक था, लेकिन जो इस पे मीम बनाया गया है वो बहुत ज्यादा फनी है। सो ऑफकोर्स वी आर गोना टॉक अबाउट इट, एंड लिटरली वी आर टॉकिंग अबाउट टाइटैनिक। जी हाँ, सो मीम में कुछ ऐसा था कि अच्छा हुआ टाइटैनिक हॉलीवुड में बनी, भोजपुरी में नहीं। जी हाँ, अच्छा हुआ टाइटैनिक हॉलीवुड में बनी, भोजपुरी में नहीं, क्योंकि अगर वो भोजपुरी में बनती तो नाम होता नैया डूबल पानी में, सजनवा मरल जवानी में। ओह माय गॉड, जब मैंने इसे पढ़ा आई वाज लाइक, नाउ दैट आई हैव सीन इट आई कैन नॉट अनसी इट, लिटरली। सो अगेन, अगर आपने नहीं सुना ध्यान से तो आप सुनिए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि अच्छा हुआ टाइटैनिक हॉलीवुड में बनी, अच्छा हुआ टाइटैनिक हॉलीवुड में बनी, भोजपुरी में बनती तो नाम होता नैया डूबल पानी में, सजनवा मरल जवानी में। मतलब नैया डूबल पानी में, मतलब नाव जो है वो पानी में डूब गई और सजन जो है वो जवानी में ही मर गया। सो यहाँ पर द थिंग इज कि यू नो व्हाट, आई हैव रेड सो मेनी लैंग्वेजेस, बट द भोजपुरी इज स्टिल द फनीएस्ट। आई मीन उनके गाने फनी हैं, और आई एम टॉकिंग अबाउट द यूपी, जो इंडिया में यूपी की जो भाषा है भोजपुरी, और वहाँ की मैं बात कर रही हूँ, और वहाँ पर ये जो है वो अगेन भाषा जो है वो बोली जाती है, पर वो इतने सेंस ऑफ ह्यूमर जो स्ट्रांग है ना उन लोगों का, मैं आपको क्या ही बताऊँ। सो अगेन, जैसे नैया डूबल पानी में, सजनवा मरल जवानी में, सही में अच्छा हुआ टाइटैनिक यहाँ नहीं बनी, टाइटैनिक इंडिया में नहीं बनी, भोजपुरी में नहीं बनी, नहीं तो ये वाला नाम होता टाइटैनिक ही। ठीक है, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त है।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
6: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
7: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। सो दोस्तों, कभी भी अगर आपके बॉस आपसे पूछते हैं आपकी जॉब के बारे में कुछ, तो आपने कैसे कैसे जवाब दिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। लेकिन जो जवाब बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। सो एक मीम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर एक एम्प्लॉय से उसका बॉस जो है वो पूछते हैं कि What are the three things that you like about your job? जी हाँ, so of course जो employee है वो बड़े ही अच्छे से सोच के, बड़े ही प्यारे से expression बना के कुछ बोलने लगता है। Boss जो है वो literally यही expect कर रहे होते हैं कि okay, पता नहीं क्या बोलने वाला है। मतलब of course कितनी सारी अच्छी चीजें हैं इनकी जॉब के बारे में जो हमने सुनिश्चित की हैं, राइट? वी आर सो गुड, वी आर सच गुड कंपनी। सो बॉस जो है वो बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है, लेकिन सामने से एम्प्लॉय बोलता है। वेल द वे, क्वेश्चन आप फिर से सुन लीजिए। सो बॉस पूछता है अपने एम्प्लॉय से, व्हाट आर द थ्री थिंग्स यू लाइक अबाउट योर जॉब? तो एम्प्लॉय सामने से बोलता है पे डे, या फर्स्ट इज पे डे, सेकेंड इज लंच टाइम, जी हाँ, और थर्ड इज क्लॉकिंग आउट। या दैट्स द ओनली थ्री थिंग्स that employee likes about the company, about this job. जी हाँ, और उसके बाद employee ऐसे सोचता है कि क्या क्या मतलब, मैंने इतना कुछ एक्सपेक्ट किया था कि ये बोलेंगे वाओ दिस इज कितनी अच्छी कंपनी है, बॉस कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी स्कीम्स होती हैं यहाँ पर, कितनी अच्छी अच्छी चीजें ये करते हैं, एक्टिविटीज अच्छी हैं, यू नो व्हाट, प्रेशर नहीं देते, वो ये सब एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन सामने से बहुत ही अच्छे से बंदा बोलता है कि देखो तीन चीजें जो मुझे पसंद है इस जॉब के बारे में, वो है पहली पे डे, सेकंड है लंच टाइम और तीसरा है क्लॉकिंग आउट। दैट्स द ओनली थ्री थिंग्स आई कैन मेंशन एंड आई कैन समराइज, और इससे ज्यादा मुझसे मत पूछिएगा। आई नो यू आर एक्सपेक्टिंग वे टू मच, बट दिस इज द रियलिटी। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपके भी बॉसेस आपसे पूछें कि कौन सी तीन चीजें जो आप अपनी जॉब के बारे में अच्छा लाइक करते हो, तो आप कह सकते हो, आप बता सकते हो अपनी वो चीजें। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए एंड यू लिटरली हेट योर कंपनी एंड हेट योर बॉस, देन यू कैन यू नो ये तीन चीजें आप भी बता सकते हो। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए, मेरी तरफ से नहीं है बल्कि ये रिकमेंडेशन है जो कि हमें पिछले कल ही आ गया था। गेस व्हाट, पिछले कल ही ये रिकमेंडेशन हमें मिल गया था, और ये रिकमेंडेशन हमें मिला है बहुत ही खास शख्सियत के द्वारा। जी हाँ, हमारे बॉस मिस्टर जतिश पूरन जी की तरफ से ये रिकमेंडेशन हमें मिला है। गाना बहुत ही खूबसूरत है, कितनी हसीन हो तुम, कितनी हसीन, वाह वाह वाह, क्या बात है सर। सो थैंक यू सो मच अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रिकमेंडेशन के लिए, क्योंकि मैं तो मानती हूँ कि आपके रिकमेंडेशन जो है वो वन इन अ मिलियन होते हैं और बहुत ही जबरदस्त होते हैं। वैसे गाने हमने सुने भी नहीं होते काफी सारे, तो एकदम मैं पहली बार सुनती हूँ। हमेशा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा हम आपके लिए करेंगे। और यहाँ पर ये जो गाना है मैं अब प्ले करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। सो थैंक यू सो मच, और ये रहा गाना मेरे सारे के सारे लिसनर्स के लिए।

0: कितनी।
1: दोस्तों मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी इस गाने के बारे में। सबसे पहले तो मैं इसे पहली बार सुन रही हूँ और मुझे ये गाना बेहद बेहद बेहद खूबसूरत लगा। आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो कुछ रिकमेंडेशंस होते हैं ना कुछ लोगों के, वो इतने ज्यादा जबरदस्त होते हैं जो लिटरली उन गानों को लेकर आते हैं, निकाल कर लाते हैं, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। सो थैंक यू सो मच सर, अगेन मैं कहना चाहूंगी फॉर दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रिकमेंडेशन। एंड अगर किसी को किसी की तारीफ करनी है ना, तो लिटरली आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स टू डू दैट। जी हाँ, मतलब आप इस गाने को ऑप्ट कर सकते हो किसी की तारीफ करने के लिए और सामने वाला स्पेशल नहीं, कुछ ज्यादा ही स्पेशल फील करेगा इसके बाद। सो इसी के साथ दोस्तों, खूबसूरत ये जो वाइब बन गई है, खूबसूरत माहौल जो है वो बन गया, मतलब ऐसा लग रहा है कि कितना खूबसूरत है सब कुछ, लाइक एवरीथिंग इज जस्ट वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि ये गाने जब खूबसूरत हो जाते हैं ना, तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा लियरिंग हो जाता है। सो आइए अब आपका स्वागत कर लेते हैं। जी आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा स्वागत कर लेते हैं, पर स्वागत तो तुम कर चुकी हो बहुत देर पहले। आई एम टॉकिंग अबाउट अपने फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड में। सो ओल्ड इज गोल्ड का वक्त हो गया है, ऑल्दो इसकी शुरुआत मुझे लग रहा है पहले ही हो गई है, क्योंकि ये जो प्यारे प्यारे खूबसूरत गाने हमने आपके लिए प्ले करने शुरू कर दिए हैं, पहले ही फीलिंग आ गई है कि ओल्ड इज गोल्ड तो पहले से ही चल रहा है। सो अब ऑफिशियली शुरू करते हैं। ये सेगमेंट जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है, हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, और ना सिर्फ मेरे बल्कि आप सबके। सो या इसी के साथ इस सेगमेंट में हम प्ले करते हैं आपके लिए बेहद ही खूबसूरत पुराने गाने, जो कि लिटरली ऐसे हैं, उनके लिरिक्स को सुनो तो बाकमाल, उनकी गायकों को सुनो तो बाकमाल, और उनकी कॉम्पोजिशन के बारे में बात करो तो ओहो बेमिसाल। सो ऐसे गाने अब हम आपको सुनाने वाले हैं, पुराने किस्से भी हम आपको सुनाएंगे और बहुत सारी और बातें करेंगे। लेकिन एक जो गाना मैं अभी आपको सुनाने वाली हूँ वो बहुत ही खूबसूरत है, और उसका नाम है, गेस करना चाहोगे आप? कीजिए कीजिए, हम तुम युग युग से। जी हाँ, ये है गाना, और फिर हम आपको सुनाएंगे पुराने किस्से।

जी हाँ दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं कहानी उस लेजेंडरी गीत की जो कि बनना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया था। जी हाँ, ये गाना जो है इसका नाम तो मैं आपको एंड में बताऊंगी, लेकिन इसकी कहानी जो है उसकी शुरुआत होती है जब एक बहुत ही खूबसूरत सी धुन सचिन देव बर्मन ने बनाई। जी हाँ, यानी कि SD बर्मन ने इस धुन को बनाया और धुन जो है वो इतनी बाकमाल थी कि शैलेंद्र जो कि इस गाने को लिखने वाले थे, सो धुन जो है वो पहले ही रेडी हो गई थी बहुत ही खूबसूरत। शैलेंद्र को इसके लिए लिरिक्स लिखने थे, लेकिन शैलेंद्र जो है वो अपने दूसरे कामों में बहुत ज्यादा बिजी हो गए और वो इस गाने को लिख ही नहीं पा रहे थे। बस फिर क्या था, SD बर्मन अपने बेटे RD बर्मन को कहते हैं कि जब तक शैलेंद्र इस गाने के बोल ना लिख के दे, घर वापस मत आना। फिर क्या था, पंचमदा बेचारे यानी कि RD बर्मन बेचारे वो शैलेंद्र के पीछे घूम रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं कि लिख दो भाई, लिख दो भाई, लिख दो भाई, पर वो लिखने में नहीं आ रहे। और इनफैक्ट ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि शैलेंद्र लिखना नहीं चाहते थे, बल्कि शैलेंद्र उस धुन के साथ जस्टिस करना चाहते थे, पर उस धुन के साथ जस्टिस करने के लिए उन्हें सही बोल ही नहीं मिल रहे थे। फिर क्या था, वो एक जगह बैठते हैं चाय पीने के लिए और वहां पर वो अपनी माचिस निकालते हैं और माचिस से वो अपना सिगरेट जो है वो जलाते हैं। बस फिर क्या था, उसी को करते करते वो ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं और उनको चांद बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखता है। बस चांद को देखते ही वो RD बर्मन को कहते हैं कि पंचमदा ऐसा करो, जल्दी

माचिस पर उन्होंने उस धुन को जो है वो बजाने की कोशिश की। फिर क्या था, उस धुन को वो माचिस पे बजा रहे थे और शैलेंद्र के मुंह में बोल आ गए। जी हाँ, और फिर उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया। उधर ही उन्होंने लिखा, खोया खोया चांद खुला आसमान। जी हाँ, ऑफ कोर्स मैं नहीं गाऊंगी, बट यू नो विच सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट। सो खोया खोया चांद लिटरली ऐसे बनाया, मतलब वो एक ऐसी चाय की टपरी पर जहां पर वो बैठे होते हैं चाय पीने के लिए, और लिटरली वो अपना सिगरेट जो है वो वहां पर पी रहे होते हैं। उस माचिस पर उस धुन को बचाया जाता है। शैलेंद्र जो है वो लिरिक्स की तलाश कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, चांद खूबसूरत लगता है, और फिर कहते हैं कि ओके बजाओ फिर से उस धुन को। माचिस पर धुन बजती है और फिर वो लिटरली उन लिरिक्स से सबका दिल जीत लेते हैं। फिर क्या था, गाना बनता है, और क्या खूबसूरत गाना बनता है, खोया खोया चांद। तो ऑफकोर्स ये गाना तो आपको सुनाना पड़ेगा, मैंने इतनी कहानी आपको सुना दिया, और ये गाना बेहद ही प्यारा है।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ, जब भी बात होती है रोस्टिंग की तो मुझे नहीं लगता किशोरदा से ज्यादा उस वक्त कोई किसी को रोस्ट करता था। इनफैक्ट अगर किशोरदा आज जिंदा होते तो अभी भी उनसे बड़ा रोस्टर इस दुनिया में कोई नहीं होता। जी हाँ, मतलब वो रोस्ट करते थे, वो ऐसे ऐसे प्रैंक्स करते थे लोगों के साथ कि लोग सोच भी नहीं सकते। वो लोगों को हंसाते थे, अपने कंटेम्पररीज को हंसाते थे और उनको लिटरली इतना परेशान भी कभी कर देते थे कि उनको लगता था कि ओह माय गॉड ये कैसे होगा। मतलब उनके असिस्टेंट्स जो हैं, जो रहे हैं ओवर द इयर्स, वो बता सकते हैं कि किशोरदा को अगर कुछ करना है और आप चाहते हो कुछ और वो करें तो वो हो ही नहीं सकता। मतलब आप उनको करवा ही नहीं सकते जो आप करवाना चाहते हो, किशोरदा को जो करना है वही करेंगे। किशोरदा बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके भाई अशोक कुमार, जो कि ऑलरेडी स्टार थे, उनके पास वो जाया करते थे, लेकिन अशोक कुमार किशोरदा को गाने के लिए मना करते थे। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि हैं, अशोक कुमार किशोरदा को गाने के लिए मना करते थे, क्यों? मतलब ये क्या बात हुई? किशोरदा की गायकी तो मतलब वर्ल्ड फेमस है, हाउ कुड ही इवन डू इट? सो ऐसा कहा जाता है, और ये कहानी अशोक कुमार ने ही खुद सुनाई है, कि किशोरदा जो है उनकी आवाज जो है वो बहुत ही ज्यादा बुरी हुआ करती थी, बहुत ही ज्यादा बुरी, और वो आइडलाइज करते थे KL सहगल साहब को। जी हाँ, अब ऐसे में कुछ हुआ और एक दिन वो इतने ज्यादा रोए कि रोने के बाद जो उनकी आवाज थी वो वाली आवाज थी जो दुनिया ने फिर बाद में सुनी। लेकिन आप खुद सोचो कि ऐसा कैसे हो सकता है। सो अशोक कुमार की स्टोरीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। जी हाँ, अशोक कुमार बोलते हैं कि तुम्हारे आइडल KL सहगल है, लेकिन जिस हिसाब से KL सहगल गाते हैं उस हिसाब से तो तुम गाते ही नहीं हो, तो ऐसा करो तुम मत गाओ, तुम गाने के लिए नहीं बने हो। किशोरदा भी इनफैक्ट ये चीज कहते रहे कि मेरे बड़े भाई मुझे सबसे ज्यादा डिस्करेज करते थे। मतलब मैं पूरे लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगता था जब भी मैं गाता था। हाँ, मैं क्लासिकली ट्रेंड नहीं था, सिंगर नहीं था, बट दैट डजंट मीन कि मैं अच्छा नहीं गाता था, क्योंकि लोग मेरी तारीफ करते थे। बट मेरे बड़े भाई बोलते थे कि नहीं नहीं, तुमको बिल्कुल नहीं गाना चाहिए, तुमको गायकी तुम्हारे लिए बनी नहीं है, कहते तुमको बिल्कुल कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, डिस्करेज करते थे। तो जो इंटरव्यूअर थी, जो होस्ट थी, जो उनके सामने बैठी हुई थी, वो बड़े ही अच्छे से कहते और तुमको तो पता है कि वो कैसे गाते थे। वो अपने अशोक भाई साहब के बारे में बात कर रहे थे। वो किशोरदा बड़ा ही अच्छा सा कुछ गाकर सुनाते हैं, एक प्यारा सा क्लासिकल सा अंतरा, और कहते वो ऐसे गाया करते थे। तो फिर अब जो इंसान खुद ऐसा गाता है वो मुझे क्या बोलेगा कि कैसा गाना है क्या नहीं गाना है। पर चलो अच्छा है, उन्होंने मुझे डिस्करेज जरूर किया पर मैंने मानी कभी नहीं, और उसका रिजल्ट जो है वो हम सब देख रहे हैं। तो इमेजिन किशोरदा जो कि लिटरली वर्ल्ड फेमस एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड सिंगर रहे हैं, सिंगर तो मतलब बाकमाल है, वो उनको उन्हीं के भाई डिस्करेज करते रहते थे। तो मैं कहती हूँ हमेशा कि मतलब हम लोग कितना भी बाहर अपने लिए इज्जत कमा लें, घर वाले जो है वो हमारी टांग खींचने में लगे ही रहेंगे। आई नो इट्स थोड़ा फन वाली सिचुएशन में भी वो करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि हमें उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि घर वालों का तो काम ही है। आप कितने भी अच्छा काम करते होंगे घर वाले तो यही बोलेंगे, अरे इससे थोड़ा और अच्छा तो हो जाता, अरे ये करते क्या हो तुम बरकुरदार। लेकिन दुनिया सेम चीज की तारीफ कर रही होती बाहर जाकर। सो या ये है कहानी। यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए, जो कि अगेन एक रिकमेंडेशन है बहुत ही खास शख्सियत की तरफ से। जी हाँ, सो ये गाना है आज और कल, इतनी हसीन इतनी जवान रफी साहब की गायकी है। सुनते हैं इसको और फिर करते हैं सीधा आपसे विदाई का ऐलान।

कहना पड़ेगा खूबसूरत, और खूबसूरत इज ऑल्सो अंडर स्टेटमेंट, मतलब ये भी मतलब बहुत छोटा वर्ड है गाने के सामने. प्यारे गाने हैं भाई, बहुत ही प्यारे, रफी साहब की गायकी. और ये गाने वो गाने हैं जिनको बहुत आपने सुना नहीं है, मतलब दे आर नॉट कल्ट फेवरेट्स, मतलब जो बहुत ज़्यादा चर्चित रहे हैं. जैसे कुछ गाने हैं किशोरदा के, लता जी के, रफ़ी साहब के, जिनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, उनको गाया जाता है, सुना जाता है, जिन्हें नॉर्मली हर किसी ने सुना है. बट ये वाले गाने लिटरली वो तो खजाने की तरह है, मतलब छुपा हुआ खजाना. बट या थैंक यू सो मच इस खजाने को सामने लाने के लिए. एंड इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है, जा रहे हैं हम और वापस आएंगे कल यानी कि थर्सडे को. आपको क्या करना है, मजे करने हैं, फन करना है, अच्छा सा यमी सा खाना खाना है, वो जो कि मुझे लगता है आपने खा लिया होगा अभी तक, डिनर करना है. बट इनकेस अगर आपने नहीं किया है तो कीजिए, और कुछ अच्छा सा देखिए, कुछ अच्छा सा पढ़िए. ठंड है तो अपने आप को कोजी कोजी रखना बिल्कुल मत भूलिए, गर्माहट में रखिए अपने आप को. और दैट्स अबाउट इट, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए. और ये रहा आपके लिए एक और गाना जो कि अगेन रिकमेंडेशन है, जी हाँ रिकमेंडेशन है, और इसका नाम है चंदा रे मोरी पिटियां ले जा, पत्तियां ले जा, पीटियां ले जा, जो भी आप इसे कहना चाहो. लेकिन यहाँ पे जो बोलेंगे वो ये आपको कहना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब आप इस गाने को पहली बार पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ोगे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. आप इसे पढ़िएगा, सुनिएगा मत, मतलब सुनिए, बट जब आप इसे लिखा हुआ पढ़ेंगे तो मुझे बताइएगा आपको आपने क्या पढ़ा. दैट्स अबाउट इट, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन का स्टोरी ब्रिज आज दिखेगा स्लोवेनिया के रंगों में। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं स्लोवेनिया की। जी हाँ, आज स्लोवेनिया के 35th स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ब्रिस्बेन के इन मशहूर लैंडमार्क्स को व्हाइट, ब्लू और रेड लाइट से रोशन किया जाएगा। यह लाइट अप क्वींसलैंड और स्लोवेनिया के मजबूत सांस्कृतिक और बिजनेस रिश्तों को सेलिब्रेट करने के लिए किया जा रहा है। वहीं ब्रिस्बेन रोवर फुटबॉल क्लब में शामिल हुए एमिन दुराकोविच, जी हां, स्पोर्ट्स लवर के लिए लोकल खबर, ब्रिस्बेन रोवर फुटबॉल क्लब ने आगामी सीजन के लिए एक बड़ा साइनिंग अपडेट दिया है। क्लब में 20 साल के स्टार मिडफील्डर एमिन दुराकोविच के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। वहीं ब्रिस्बेन ओलंपिक 2032 की तैयारियों को लेकर काउंसिल की बड़ी बैठक आज। साल 2032 में होने वाले ब्रिस्बेन ओलंपिक्स को लेकर आज ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल की एक बेहद अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, नए स्टेडियम्स के निर्माण और बजट को लेकर कई रणनीतियों पर चर्चा हुई। वहीं ब्रिस्बेन के स्कूलों में डिजिटल डिटॉक्स मुहिम की शुरुआत, बच्चों और पेरेंट्स से जुड़ी एक बेहद जरूरी खबर। ब्रिस्बेन के कई सरकारी स्कूलों ने आज से एक नई पहल शुरू की है जिसका नाम है डिजिटल डिटॉक्स। इसके तहत स्कूल कैंपस में बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम करने और उन्हें आउटडोर गेम्स या फिजिकल एक्टिविटीज से जोड़ने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। वहीं साउथ वैंक पार्कलैंड्स में आज से शुरू हो रहा है विंटर फूड फेस्टिवल। फूडीज के लिए एक बेहतरीन अपडेट, अगर आप आज शाम को कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं तो साउथ वैंक पार्कलैंड्स का रुख कर सकते हैं। आज से वहां स्पेशल विंटर फूड फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है। वहीं ब्रिस्बेन में मौसम का मिजाज, आज धूप निकली बट वहीं हल्की ठंड भी देखने को मिली। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुंबई में मॉनसून की धमाकेदार एंट्री, कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। पहली बड़ी खबर मुंबई से, जहां लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मॉनसून ने दस्तक दे दी है। कल रात से ही मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में जबरदस्त बारिशें हो रही हैं। मौसम विभाग ने आज सुबह ही मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। वहीं भारत अमेरिका के बीच नई दिल्ली में हाई लेवल ट्रेड टॉक्स शुरू। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने के लिए आज नई दिल्ली में एक बहुत ही अहम हाई लेवल मीटिंग शुरू हो रही है। दोनों देश मिलकर एक नए द्विपक्षीय व्यापार समझौते का खाका तैयार कर रहे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब। जी हाँ, ग्लोबल स्टेज से एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के एक फोरम में भारत ने पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर बहुत सख्त आपत्ति जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान इस मंच का राजनीतिकरण कर रहा है। वहीं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बड़ा कदम, एनएलसी इंडिया और आईओसीएल के बीच समझौता। भारत में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी डील हुई है। सरकारी कंपनी एनएलसी इंडिया और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए एक एमओयू साइन किया है। वहीं खेती पर अलनीनो का साया, कृषि मंत्री ने जारी किया बयान। जी हां, देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मॉनसून और फसलों को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि इस साल अलनीनो के असर की वजह से देश के करीब 111 जिलों में फसलों को नुकसान होने का खतरा बना हुआ है। ऐसे के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले अमेरिकी सीनेट का बड़ा फैसला, ईरान के खिलाफ सैन्य एक्शन रोकने का प्रस्ताव पास। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सबसे बड़ी खबर वॉशिंगटन से है। अंतर्राष्ट्रीय
अमेरिकी सीनेट ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान पर रोक लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। 50 और 48 के बेहद करीबी मुकाबले से पास हुए इस वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के मुताबिक अब राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की मंजूरी के ईरान के खिलाफ कोई नया सैन्य कदम नहीं उठा सकते। वहीं ओमान और ईरान मिलकर संभालेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता। मिडिल ईस्ट में तनाव को कम करने के लिए एक और अच्छी खबर है। ओमान और ईरान ने मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित बनाने के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला किया है। ईरान के विदेश मंत्री और ओमान के सुल्तान के बीच मस्कट में हुई एक हाई लेवल मीटिंग के बाद ये ऐलान किया गया है। वहीं यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का नया बयान। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद को लेकर एक नया मोड़ आया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी यानी कि IRC की दुनिया के अमीर देशों से खास अपील। वैश्विक संकटों से निपटने के लिए इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण व्हाइट पेपर जारी किया। IRC ने वर्ल्ड बैंक और अमीर देशों से अपील की है कि वे गरीब और युद्ध से प्रभावित देशों के लिए डेबिट स्वैप का इस्तेमाल करें। वहीं ग्लोबल एविएशन सेक्टर में बड़ा बदलाव। नए सिक्योरिटी नियम आज से लागू। अगर आप या आपके कोई रिश्तेदार इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है। आज से दुनिया के कई देशों में इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए नए डिजिटल और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी नियम लागू कर दिए गए हैं। इसका मकसद एयरपोर्ट पर लगने वाली लंबी लाइनों को कम करना और सुरक्षा को पुख्ता करना है। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नई हेल्थ एडवाइजरी। हेल्थ वर्ल्ड से एक जरूरी अपडेट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आज दुनिया भर में बदलती लाइफस्टाइल और पैकेज्ड फूड को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें बच्चों के खाने पीने की चीजों में शुगर और सॉल्ट की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए सरकारों को कड़े कानून बनाने को कहा गया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप 2026, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ, सबसे पहले पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से करारी शिकस्त दी, लेकिन महफिल लूट ली कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। रोनाल्डो ने मैच में शानदार 2 गोल दागे और उसके साथ ही वे दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 6 अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में गोल किए हैं। वहीं वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और घाना का मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ। फीफा वर्ल्ड कप के एक और रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड और घाना के बीच खेला गया मैच बिना किसी गोल के 0-0 पर ड्रॉ रहा। वहीं मेंस हॉकी प्रो लीग, भारत ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 4-3 से हराया। हॉकी के मैदान से भारत के लिए बहुत बड़ी और खुश करने वाली खबर। लंदन में खेले गए FIH मेंस प्रो लीग के एक बेहद कड़े और रोमांचक मुकाबले में भारत ने अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। वहीं US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से कैलिफोर्निया में शुरू। बैडमिंटन फैंस के लिए भी आज का दिन खास है। US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। वहीं ISSF जूनियर वर्ल्ड शूटिंग में भारत मेडल टैली में टॉप पर। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
4: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT, यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
5: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
6: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend, or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलां तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओमजोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओमसॉर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओमसॉर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फिल्मों के क्लाइमैक्स में हीरो जीतता है और लड़की ले जाता है, असल जिंदगी में विलेन।
1: ए विलेन।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ
1: ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆਏ ਹਾਂ
0: ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇਹ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
2: ਬਹੁਤ ਬੇਕਿਸਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਅੱਜ ਮੱਥੇ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੇਰੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ
0: ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਆ
3: ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗੇ
4: ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋ ਲੋ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਮੂਵੀ ਮਿਸ ਕਰ
0: ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਨਾ ਆਵੇ
3: ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਕਫਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਟ ਕੇ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
4: ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ
5: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
6: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
7: जस्ट मूव फ्रॉम ओवरसीज, स्टार्ट बैंकिंग लाइक अ लोकल विद ANZ, वी आर वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट बैंक्स एंड वी आर चोजन बाय मिलियंस। For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
8: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी तुसी बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101.1 ते चार छे संदेश अलग दिन से बन चुके हो ढेर सारिया गल्ला करन दा सारा बहुत ही ज्यादा सोहना जिहा वेला हो चुका है जी शुरू ते इन्हां गल्लां नूं सुलगाउणा पंजाबी गीतां दा तड़का तुसी की खाणा है तुसी जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो रेडियो सोनी 101.1 सर फेसबुक पेज दे जी बिस्वानी @bisswani.com साथ ही ईमेल आईडी है जरिया जेड़ा तुम चंगा लगता है अपना लो सा गलत जरूर करो तो फटाफट के जुड़ना शुरू करो मैं हूं ही वापिस होने कितने नहीं जाना तो गलत जरूर करते रहना बस तुम जुड़ना ना भूलो हूं वापिस आई मैं तुम उन्होंने समा इन्होंने सोने जी कितने इंजॉय करो।

जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिसवानी 101 एम ते जी आर चे संदेश चौलक दिनाल से बने हुए। देखो शराब दी लत हुंदी है ना जेड़ी वो ना सिर्फ सेहत दे लई बहुत ज्यादा हानिकारक हुंदी है बल्कि शरीरिक मानसिक अते समाजिक जीवन नूं भी हौली हौली ना बर्बाद ही कर दिंदी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री दे विच वी अजिहा होया है। बिल्कुल सही सुनिया तुसीं, बॉलीवुड इंडस्ट्री विच अजिहे कई सितारे हैगे ने जिन्हां नूं शराब दी लत लग गई सी। इस बुरी आदत ने कई सारे एक्टर्स दा करियर हैगा ना जिहड़ा तबाह कर दिता सी ते कई कलाकारां दी जिंदगी नूं मुश्किल बना दिता सी। कुछ सितारियां ने इस लत तों बाहर निकल के अपनी जिंदगी सवारी ते कुछ इस दे शिकार बन के रह गए। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂੰਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਇਹ ਗੀਤ।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

जी जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी वन सर वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिन से बने हुए दस रही सीना मैं थानू के केड़े केड़े अजे सितारे है जिन्हां दी जिंदगी शराब के नशे ने खराब करती सी। इस दे विच सब तो पहला नाम यो यो हनी सिंह दा हुंदा है। देखो बॉलीवुड ते पंजाबी सिंगर यो यो हनी सिंह दा शराब ते ड्रग दी लत नाल जूझना उन्हां दे करियर दा सब तो चुनौतीपूर्ण दौर रहा सी, जिस दे कारण ओह साल 2012 तो 2022 दे विचकार ना म्यूजिक इंडस्ट्री तो लगभग गायब हो गए सी। उन्होंने खुद इस गल नूं स्वीकारिया हैगा कि ओह शराब ते नशीली दवाइयां विच बुरी तरह के डुब चुके सी, जिस नाल जिस तो उन्हां नूं निकलण विच लगभग 8 साल का समा लग गया सीगा।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

जी तक फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बरसाने 107.1 FM ते चार चे संदेश अलग दिन से बने हुए इस लिस्ट विच अगला जेड़ा नाम है गया, वो है जी मनीषा कोइराला दा। ता मनीषा कोइराला ने ना एक तो एक फिल्मा विच अपनी एक्टिंग दा जलवा बिखेरिया है। उन्होंने बहुत सोहनी अदाकारा की थी, तो बहुत ही सोहनी अदाकारा एक्ट्रेस है अदाकारा हैगी है, बहुत ही वधिया एक्टिंग हर फिल्म दे विच कीती है। पर उन्होंने शराब की लत नाल बहुत लंबा संघर्ष किया। मनीषा ने खुद खुल के दस्या है कि एक समय उन्हां दी जिंदगी शराब की लत की वजह नाल पूरी तरह दे नाल बिखर गई सी। इस लत ने ना सिर्फ उन्होंने सेहत नूं नुकसान पहुंचाया बल्कि उन्होंने करियर ते निजी जीवन ते भी बहुत ही ज्यादा डूंघा असर पाया सी।

0: हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत बहुत बहुत बड़ा स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वंसन वन एम ते चार छे संदेश अलग दिन उस बने हुए। अगला जेड़ा नाम है गया ना उसनों सुन के तो उसी हैरान जरूर हो जाऊंगे क्योंकि वो पट खानदान के नाल जुड़े हुए है। आलिया भट्ट बिल्कुल भी नहीं है नाम, इस बारे सोचियो ना ते ना है शाहीन भट्ट, राम है जी पूजा भट्ट। जी हाँ, पूजा भट्ट का नाम इस लिस्ट विच शामिल है तो सब हैरान हो गए होंगे पर यही सच है। पूजा भट्ट नू शराब की लत लग गई थी। पूजा भट्ट ने खुद खुल के दस्या है कि एक समय उन्होंने जिंदगी शराब की लत की वजह नाल बुरी तरह के नाल प्रभावित भी हुई सी जिस तों निकलण दे विच उन्होंने काफी टाइम लग गया सी।
1: एक दो गल्ला करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सीखी।

0: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
0: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धन राशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिनकॉइन कहते हैं। अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ
1: ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆਏ ਹਾਂ
0: ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇਹ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
2: ਬਹੁਤ ਬੇਕਿਸਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠ ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਅੱਜ ਮੱਥੇ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੇਰੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਆ
0: ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਆ
3: ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗੇ
4: ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੋ ਲੋ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਮੂਵੀ ਮਿਸ ਕਰ
0: ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਨਾ ਆਵੇ
3: ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਕਫਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਟ ਕੇ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
4: ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ ਹੋਣੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ
5: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
6: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
7: जस्ट मूव फ्रॉम ओवरसीज, स्टार्ट बैंकिंग लाइक अ लोकल विद ANZ, वी आर वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट बैंक्स एंड वी आर चोजन बाय मिलियंस। For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
6: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो। वधेरे किफायती रिहायश दी शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवें घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहे तेरे रेडियो स्टेशन रेडियो प्रसवानी वंसर वाले एम ते जी आर छे संदेश अलग दिन तुसी बने हुए हो। इसलिए इस दे विच अगला नाम बहुत ही खूबसूरत अदाकारा दा है, बहुत कई साल पुराने 80s से 1780s दे जिहड़े दौर दी एक्ट्रेस सी परवीन बॉबी, उन्होंने नाम है इस लिस्ट में शामिल। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस सी परवीन बॉबी, पर शराब की लत ने ना उन्होंने भी काफी नुकसान पहुंचाया है, इसे करके उन्होंने करियर ही है जो बर्बाद हो गया सी। पता हो कि परवीन बॉबी अपने समय की हिट एक्ट्रेस सी, उन्होंने बहुत सारिया शानदार फिल्मा दित्तियां ने, उन्होंने खूबसूरती का जलवा तो अज भी बरकरार है।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: ना तेरे वर्गा आशिक वेख्या, ना तेरे वर्गी आशिकी।
5: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.
0: नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
6: Only God can judge me. That right? Only God, baby. Nobody else.
7: They see pretty. Hey, yo, Sean.
8: Oh, don't be kissing off the nook of the knock of the knock. Made it all the makama nala. Oh, made it all the makama nala. Buck a tucker. Sad is a banner.

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी वन सर वन एम से जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। इस लिस्ट विच एक बहुत ही दिग्गज नाम भी है जो साडे विच कार नहीं है कि पर नाम उन्हां दा है। नाम है जी धर्मेंद्र। हिंदी सिनेमा दे दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने खुद स्वीकार किया है कि पीन दी लत दे कारण उन्हां दे करियर दे विच गिरावट जरूर आई है। फिर फरदीन खान दा नाम भी इस विच शामिल है। ड्रग्स अते शराब दी लत दे कारण फरदीन खान नूं रीहैब जाना पै गया सी, जिस नाल उन्हां दे करियर नूं झटका लग्गिया। प्रतीक बब्बर नाल भी अजिहा ही होया। राज बब्बर अते समिता पाटिल दे बेटे प्रतीक बब्बर दा करियर भी नशे दी लत करके ही प्रभावित होया हैगा है। तां इह सारे नाम हैगे ने जो मेरे अकॉर्डिंग इस लिस्ट विच शामिल ने।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
4: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

इन द हाउस हाउस हाउस हाँ देखो जिन्हें भी नाम मैं हूँ दसे है ना वो नो डाउट बहुत ही वधिया कलाकार ने सारे दे सारे बहुत ही ज्यादा शानदार एक्टर्स है तो कौन सब तो ज्यादा पसंद है ते किसदा तो लगता है कि वो जड़ा समा उन्हों का खराब गया है वह नहीं जाना चाहिए सी ते जो शराब के नशे के ना डुबते तो उस टाइम ना बर्बाद करते तो अच होर ज्यादा उपर होने से दसो जरूर तुसी जुड़ो साडे नाल रेडियो ब्रिसवानी 107.1 FM साडे फेसबुक पेज है जिते ब्रिसवानी@ब्रिसवानी.com साडी ईमेल आईडी है जरिए जेड़ा भी तुहानू चंगा लगदा है तुसी अपनाओ पर साडे नाल पता जरूर करते रहा करो बाकी मैं तो तुहानू यही कहना है जी कि कल करदे हां मुलाकात रखो अपना ख्याल सत श्री अकाल।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: To everyone tuning into Radio Biswani, this is Shah Rukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan, and you are listening to Radio Biswani.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारी खातिर मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: है मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तू भी ना आती।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT, यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट, ब्रिस्बेन।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उत्ते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: Maria, suku, suku.
1: आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू आई

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

नमस्कार, आदाब, खैर मकदम। रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर आपको आपसे मिलवाने, आपको उस ईश्वर से, उस शक्ति से मिलवाने के लिए हम एक बार फिर से आ गए हैं। आप ही के जीवन के आधार को आपको समझाने, जीवन आधार लेकर हमेशा की तरह आज भी इस सफर में सताक्षी आपके साथ है। श्रोताओं, कोई तो है जो इस सृष्टि को चला रहा है, चाहे आप उसे अल्लाह कह लें, ईश्वर कह लें, जीसस कह लें या फिर वाहेगुरु कह लें। कोई तो शक्ति है जिसने हम सबको थाम रखा है और जिसके पास हमारी हर मुश्किल का हल है। आइए उसी आधार को आज हम प्रणाम करते हैं और उसी की आराधना वंदना करते हुए, उसी से दुआ मांगते हुए कि अब जीवन में कोई क्षण कठिन ना आए, बढ़ते हैं सफर में आगे। सुनते रहिए जीवन आधार।

आधार आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी के साथ। श्रोताओं, कद बढ़ाना हम सब चाहते हैं, आप सब चाहते होंगे कि आपका कद यकीनन इतना ऊंचा हो कि लोग आपकी इज्जत करें, आपके आते ही उठकर खड़े हो जाएं। यकीन मानिए, कद सिर्फ ओहदे से ऊंचा नहीं होता है, कद तो उसका ऊंचा होता है जो लोगों से झुक कर मिलता है, जिसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, सबको बराबर इज्जत जो देता है। कद ओहदा असल में उसी का ऊंचा होता है, वरना इस संसार में कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। वो कहते हैं ना कि संसार में सब कुछ क्षणिक है, तो आपके पास आज क्या है क्या नहीं है उसे भूलकर आप इंसान हैं और आपको इंसानियत से सबसे मिलना है, यही याद रखें काफी है। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर जीवन का आधार, जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी पर। और आज इस सफर में एक बार फिर से श्रोताओं आपका साथ मैं निभा रही हूँ। ये साथ कुछ ऐसे गीतों के साथ आगे बढ़ रहा है जो जिंदगी में बहुत ज़रूरी हैं और हमारी जिंदगी जिनके आधार पे टिकी है। कुछ ऐसे ही बातें और ऐसे ही गाने हमारा साथ आगे भी निभाते रहेंगे। सुनते रहिए जीवन का आधार, जीवन आधार।

आप हमेशा अपनी बात को सही साबित करना चाहते हैं, हमेशा सच कहना चाहते हैं, या आपकी बात ही सच है ये साबित करना चाहते हैं। याद रखिए कि दीपक कभी बोलता नहीं है, बस उसका प्रकाश ये बता देता है कि दीपक की रोशनी कितनी है। अगर उसे बुझा दिया जाए तो पल भर में अंधेरा हो जाएगा, और कम से कम वो जगह जहाँ पर वो जल रहा है वो उसी दीपक की वजह से रोशन है। ठीक इसी तरह भी आप अपने बारे में कभी कुछ मत बोलिए, बस अच्छे कर्म करते रहिए, वही कर्म आपका परिचय देते रहेंगे। सुनते रहिए हमारे साथ जीवन आधार।

आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर जीवन का आधार जीवन आधार। जी हाँ, जीवन की नैया को पार अगर लगाना है तो जीवन के आधार को समझना बहुत जरूरी है। हम सब भटके हुए मानव हैं और बहुत जरूरी है कि अपने आप को सही रास्ते पे लगा के जीवन की सच्चाई को, जो वाकई जीवन की सच्चाई है, उसे समझ सकें और जिस भ्रम में हम जी रहे हैं उससे परे हटकर अपनी जिंदगी जी सकें। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी और आगे बढ़ते हैं जीवन से जुड़े एक और गीत के साथ।

जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो संभालने की जरूरत है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है आपकी जीभ। जिसने अपनी जीभ को संभालना सीख लिया वो जीवन को भी संभाल लेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जीभ का स्वाद आपका स्वास्थ्य खराब करता है, और जीभ के सहारे जो वाणी निकलती है ना, वो आपके संबंध खराब करती है। सिर्फ आपके घरेलू संबंध नहीं, आपके पारिवारिक संबंध नहीं, आपकी मित्रता खराब करती है, आपके काम के रिश्ते खराब करती है, आपको अर्श से फर्श पर लाने का काम आपकी जीभ बहुत आसानी से करती है। इसलिए अगर आपने अपनी जबान पर काबू कर लिया, उसे संभाल लिया, तो फिर आप जीवन में सब कुछ संभाल लेंगे। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

श्रोताओ, जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर। और देखिए, ऐसा है कि जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता, जैसे कि समय और इंसान। आप समय को ही देख लीजिए, जो समय बीत रहा है वो कभी लौट के नहीं आएगा। जो समय गुजर गया उसे आप किसी भी कीमत पर वापस नहीं पा सकते। और इंसान, जो इंसान अपनी फितरत बदलता रहता है, जो इंसान आपके सामने कुछ और है और दूसरे के सामने कुछ और, वो इंसान ना तो कभी आपका हो सकता है और ना ही किसी और का। कम से कम आप खुद एक ऐसे इंसान ना बने जिसकी फितरत हर किसी के आगे बदलने की हो। सुनते रहिए जीवन आधार रेडियो ब्रिस्वानी पर।

ये था आज जीवन आधार का सफर रेडियो प्रस्वानी पर। आज हमने फिर से जिंदगी को, ईश्वर को करीब से जानने की एक और कोशिश की। याद रखिए, अगर ईश्वर को पाना है तो खुद के अंदर झांकना होगा। अगर ईश्वर की शरण में जाएंगे, उस ऊपर वाले की शरण में जाएंगे, तभी आप इस जीवन को और इससे जुड़े जो सपने हैं उनको पा पाएंगे। कल फिर इसी सफर में आपसे एक बार फिर से मिलेंगे। नमस्कार।

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, कैसे हैं आप सभी? नमस्कार, बिन वेरी वेरी वेलकम आप सभी का। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चांदनी जैन, लेकर हाजिर हूं आप सभी के बीच हमेशा की तरह चांदनी का सफर। और आशा करती हूं ये सफर बहुत ही बेहतरीन जाए आप सभी के लिए। आज है थर्सडे यानी कि वीरवार, 25 जून यानी कि 25th of June है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की फ्रेश न्यूज अपडेट के साथ, वेदर रिपोर्ट और कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, चाय और कॉफी तैयार रखें। ऑफिस जा रहे हैं तो सेफली ड्राइव कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप घर पे हैं तो जी एंजॉय जरूर कीजिए चाय के कप के साथ इस सफर को, क्योंकि ये सफर बेहतरीन होने वाला है बहुत सारी बातों के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

तो आइए जी, चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की कुछ ब्रिस्बेन और ऑस्ट्रेलिया की अपडेट्स के साथ। साउथ ब्रिस्बेन के एक पुराने इंडस्ट्रियल एरिया को एक मॉडर्न रिवर फ्रंट कम्युनिटी में डेवलप करने की प्लानिंग चल रही है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, पब्लिक पार्क्स, कैफेज और एंटरटेनमेंट स्पेसेस शामिल होंगे। ये डेवलपमेंट ब्रिस्बेन के फ्यूचर ग्रोथ और 2032 ओलंपिक्स प्रिपरेशन का भी हिस्सा माना जा रहा है। वहीं पर ब्रिस्बेन सिटी के अपटाउन प्रिसिंक्ट में मेजर रीडेवलपमेंट प्लान्स अनाउंस किए गए हैं और इससे शॉपिंग, डाइनिंग और एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस और भी बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। लोकल बिजनेसेस और टूरिज्म सेक्टर को भी इसका फायदा मिल सकता है। तो आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे कुछ गीतों के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन, कहीं मत जाइएगा क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स आज आप सभी के बीच शामिल है। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

0: सुनो आदि, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुमारे,
1: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

हां जी, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। कुछ रोड सेफ्टी रिमाइंडर आप सभी के लिए बताई जा रही है। क्वींसलैंड पुलिस ने ड्राइवर्स को विंटर सीजन में एक्स्ट्रा कॉशन रखने की सलाह दी है। आपको बता दें कि अर्ली मॉर्निंग फॉग और रिड्यूस्ड विजिबिलिटी के कारण स्पीड लिमिट्स और सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो रोड में आप सभी जो है बहुत ही सेफ्टी के साथ ड्राइव कीजिएगा। वहीं पर अगर हम स्पोर्ट्स अपडेट की बात करें तो क्वींसलैंड के बॉक्सर लियाम पारो ने रिसेंट इंटरनेशनल बॉक्सिंग इवेंट में शानदार परफॉर्मेंस दी है और ऑस्ट्रेलियन बॉक्सिंग कम्युनिटी में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। तो आइए इसी के साथ हम भी एक्साइटमेंट के साथ ये सुनते हैं गीत प्यारे प्यारे, और आप बस बने रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्वानी और एंजॉय कीजिए अपने दोस्त और होस्ट आरजे चांदी के सफर को। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

0: वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम चांदनी का सफर, और आशा करती हूँ कि आपका ये सफर में बेहतरीन ही बना रही होंगी, बोर नहीं हो रहे होंगे, है ना। तो दोस्तों, अगर कुछ गिला शिकवा हो गया हो या गलती से जाने अनजाने में कोई गलती मुझसे होगी हो तो आई एम वेरी वेरी रियली रियली वेरी सॉरी। तो आप इसके साथ मेरे साथ बढ़िए आगे, क्योंकि मैं कुछ ब्रिस्बेन की वेदर अपडेट देने वाली हूँ। जी हाँ, आज ब्रिस्बेन में वेदर काफी प्लेजेंट रहने वाला है। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो 12 डिग्री है और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस है। पार्टली क्लाउडली कंडीशन जो है एक्सपेक्टेड है। वहीं पर आफ्टरनून में हल्का सा शावर देखने को भी मिल सकता है। वहीं पर मॉर्निंग और इवनिंग के लिए लाइट जैकेट कैरी करना अच्छा रहेगा। तो ये थी भाई ब्रिस्बेन की वेदर अपडेट। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ये प्यारे से गीत ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।
1: अरे अरे ए ए

आइए जी इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और कुछ कॉस्ट ऑफ लिविंग अपडेट की बात करते हैं। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया भर में हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी और कॉस्ट ऑफ लिविंग अभी भी डिस्कशन का मेजर टॉपिक बना हुआ है। जी हाँ, अभी मतलब ये खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसको बहुत ही ज्यादा इसकी चर्चाएं जो है हुई जा रही है, क्योंकि दोस्तों एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंटरेस्ट रेट्स और रेंटल मार्केट ट्रेंड्स को लोग जो है क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जी हाँ, करना भी चाहिए वैसे। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते रहिए रेडियो ब्रिसवानी, हम सुनते हैं प्यारा सा गीत, एंजॉय कीजिए सफर को और सेफली ड्राइव जरूर कीजिएगा।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। तो दोस्तों, अगर हम कुछ हिस्ट्री की बात करें, क्या आप सभी जानते हैं आज के दिन यानी कि 25th ऑफ जून को दुनिया की हिस्ट्री में कई इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं। जी हाँ, यानी कि इसी दिन 1950 में कोरियन वॉर की शुरुआत हुई थी, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक माना जाता है। जी हाँ, वो मतलब 25th जून को हुई थी 1950 में। वही दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे एक प्यारे से थॉट के साथ। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है, ये सभी जानते हैं, लेकिन दोस्तों हर दिन की जो कंसिस्टेंसी होती है आपको सक्सेस के करीब जरूर ले जाती है। इसीलिए सक्सेस को ये मत समझिए कि ये मतलब कोई मैजिक वाली चीज है कि आज मेहनत की तो इसका रिजल्ट आज ही मिल जाएगा। नहीं, हर दिन अगर हम मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत यानी कि लाइफ टाइम तक उसका रिजल्ट मिलता है। तो इसीलिए कभी भी मेहनत करनी छोड़नी नहीं चाहिए और ये ना उम्मीद रखे कि आज जो मेहनत की है उसका फल आज ही मिलेगा। तो बस अपनी कहते हैं ना कि मेहनत करनी नहीं छोड़नी है, बस अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते रहना है। जी हाँ, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्वानी।

0: हाँ जी, वेलकम बैक है जी रेडियो प्रिस्वानी में। तो आइए इसी के साथ एंटरटेनमेंट को एक अपडेट जान लेते हैं। वैसे बॉलीवुड फैंस के लिए हमेशा ही मेरे पास गुड न्यूज होती ही है, तो आज भी है एक प्यारी सी गुड न्यूज। इस साल जो है ऑस्ट्रेलिया में कई इंडियन फिल्म फेस्टिवल्स और कल्चरल इवेंट्स जो है वो शेड्यूल किए जा रहे हैं। ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट रीजन में भी जो कम्युनिटी इवेंट्स हैं उनके अनाउंसमेंट जल्दी ही देखने को मिल सकती है। तो है ना ये बॉलीवुड फैंस के लिए गुड न्यूज। जी हाँ, तो दोस्तों ये था आज के मॉर्निंग अपडेट्स। आपका दिन प्रोडक्टिव, पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहे हमेशा की तरह, यही मेरी दुआ है। तो मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चानी जैन। ये था चानी का सफर। अब वक्त है अच्छे अच्छे गाने सुनने का। हमेशा आप सभी खुश रहे, स्टे वार्म और स्टे पॉजिटिव एंड हैव अ फैंटास्टिक थर्सडे ब्रिस्बेन। टेक केयर, बाय बाय। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे आप सभी के साथ न्यू अपडेट्स के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।
1: बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है?
2: है।
1: गर्मियों से निहार है?
2: है।
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630 5438 3630 5438।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्थानी 1701। हम आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भरोसा करना अमेरिका की नादानी, ट्रंप पर भड़के नेतन्याहू के मंत्री। पश्चिम एशिया में लगभग चार महीनों से जारी संघर्ष में जहां तक एक तरफ अमेरिका और ईरान शांति समझौते पर सहमत हुए हैं, वहीं दूसरी ओर इसराइल अभी भी ईरान और लेबनान के साथ शांति समझौते पर सहमत होने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, इसराइल ने दो टूक अंदाज में अमेरिका को नादान बताया। इसके साथ ही ईरान लेबनान पर अकेले कार्यवाही करने तक की बात कह दी। अमेरिका ईरान के तनाव के बीच यूएन ऑपरेशन हॉर्मुज में फंसे 11,000 नागरिकों को निकालने का काम शुरू। युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर एक ऑपरेशन शुरू किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएमओ के सेक्रेटरी जनरल आर्सोनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि यह ऑपरेशन ईरान, ओमान, इस इलाके के दूसरे तटीय देशों, अमेरिका और मैरिटाइम इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर किया जा रहा है। आइए जुड़ते हैं अब भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। जम्मू कश्मीर हमारा आंतरिक मामला, राजनीति बंद करे इस्लामाबाद, यूएन में भारत ने पाकिस्तान को फिर लगाड़ा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्थ नेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा। ये पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। सुरक्षा परिषद की अरैया फॉर्मूला बैठक के दौरान बोलते हुए भारतीय प्रतिनिधि हरीश ने पाकिस्तानी प्रतिनिधि के साथ साथ बैठक के सह अध्यक्ष के रवैये पर भी कड़ा ऐतराज जताया। आपातकाल की 51वीं बरसी, लोकतंत्र का वो अंधेरा और सलाखों से निकली सीख हमेशा रहेगी याद। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का ऐसा अध्याय है जिसकी स्मृतियां 5 दशक बाद भी धुंधली नहीं हुई हैं। उस दौर में हजारों लोग बिना मुकदमे जेलों में डाले गए, समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगाई गई, असहमति को अपराध माना गया और नागरिक स्वतंत्रताओं पर अभूतपूर्व अंकुश लगा दिया गया। आज जब भारत आपातकाल की 51वीं बरसी मना रहा है, तब उस दौर के प्रत्यक्षदर्शी और संघर्ष झेलने वाले लोग उस केवल राजनीतिक घटना के रूप में उस दिन को याद नहीं करते, वो अपने जीवन के निर्णायक अनुभव के रूप में भी उस दिन को याद करते हैं। एयर इंडिया में बड़ा बदलाव, पूर्व नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप खरोला की वापसी, चेयरमैन के कार्यकारी सलाहकार नियुक्त किए गए। भारी घाटे और कई चुनौतियों से जूझ रही विमानन कंपनी एयर इंडिया में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। इसके तहत एयर इंडिया के पूर्व सीएमडी और नागरिक विमानन मंत्रालय के पूर्व सचिव प्रदीप सिंह खरोला की कंपनी में वापसी हो गई है। खरोला को एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का कार्यकारी सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।

0: on 1701 Brisbane. It's your morning drive show with your host, Amita and Jatish. सुबह का सफर आपके हम सफर जतीश और अमिता.
1: एंड आफ्टर मच स्ट्रगल वी आर ऑन एयर.
2: नमस्ते, गुड मॉर्निंग
1: सबको. बहुत सा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों. उम्मीद है आप आज अच्छे होंगे. अमिता, आई होप यू आर ओके बिकॉज बीन कोल्ड चिली टुडे. ओह मैन, इट वाज 7 degrees आई थिंक. At my place,
2: I felt too. I felt it cold today.
1: Yeah. Yes. And how do I sound today?
2: You sound fantastic. No sniffling. No.
1: Oh, that
2: sneezing.
1: Sniffling was due to very cold air that was going in my. Okay. तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागतम. और कार्यक्रम में आगे चलने से पहले. Mm-hmm. बढ़ने से पहले चलो फिजी न्यूज बता देता हूं. ओके, फिजी बजट टू बी अनाउंस टुमारो. द फिजी गवर्नमेंट विल डिलीवर इट्स 2026-2027 नेशनल बजट ऑन फ्राइडे 26 जून. मेनी फिजियंस आर वॉचिंग क्लोजली फॉर अनाउंसमेंट्स ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, फ्यूल प्राइजेस, वेजेस एंड इकोनॉमिक सपोर्ट मेजर्स. Government approves a new development task force. Cabinet has approved a special problem-solving team to help speed up delayed government projects under Fiji National Development Plan and Vision 2050. The aim is to remove bottleneck and get major projects completed faster. I hope they don't become another bottleneck. Mm. Okay, economy and debt remain major concern. Recent economic discussions indicate Fiji's public debt remains high, estimated at around 11.4 billion, or about 81% of GDP. Economists continue to debate the best path for economic growth while managing debt. Water security improvement in Bar, a new reservoir roof project has been completed in Bar, improving water security for around 6,000 residents and helping protect local water supplies. Tourism sector expanding. Fiji's tourism industry continues to grow. New hotel and resort developments are expected to create hundreds of jobs and add more visitors, visitor accommodation over the next year. International support and security. Australia's support to Fiji has increased significantly, including funding for schools, health facilities, and maritime security cooperation. Discussions on regional security and crime prevention remain a priority. Sports preparation continues for local football competition and rugby programs, while Fiji Drua players continue attracting international attention. Okay, and thought for today? जिंदगी में रास्ते कभी सीधे नहीं होते, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलना नहीं छोड़ते.
2: Wow. Okay. Persevere, eh?
1: Yep.
2: Persevere.
1: Keep on going, mate. Keep on trucking, as they say.
2: Yep.
1: Okay. तो हम भी यहाँ से ट्रक करते रहेंगे, ट्रकिंग करते रहेंगे और चलते हैं. ओह ओके, लेट्स गो इन. क्या बोलते हैं,
2: मौसम
1: का हाल देखते हैं और रास्ते पर क्या हो रहा है दोस्तों. और सबसे पहले आई थिंक वी शुड लुक एट द रोड रिपोर्ट, राइट? मोर इम्पोर्टेंट. अच्छा, 7 मिनट पहले आया था. विलियम रोड नॉर्मन पार्क हैज़र्ड ईस्ट बाउंड इज नाउ क्लियर. हमारा तो बस सब क्लियर ही रहता है जो हम देते हैं न्यूज. विनम इप्सविच मोटरवे व्हीकल मल्टी व्हीकल क्रैश यहाँ हुआ है. कोई 18 मिनट पहले आया है दोस्तों. लेन एंड लेन और लेन्स रिड्यूस्ड ईस्ट बाउंड टूवर्ड्स डेरा.
2: Oh, but there was so much of traffic when I was coming. The Ipswich motorway looked so busy, and same the Centenary was building up.
1: Yeah, because of all that. Yeah. All right. today, कहा गया शावर और टू 12 and 21 रहेगा दोस्तों. मुझे लग रहा है थोड़ा सा इधर उधर कहीं शावर होगा, लेकिन बादल छाए रहेंगे ऐसा लग रहा है. कल के लिए शावाओ 2:13 and 20 रहेगा और सैटरडे के लिए शावाओ 2:12 and 21 और संडे के लिए शावाओ 2:12 and 21 रहेगा, मंडे के लिए शावाओ 2:12 and 21, ट्यूसडे के लिए शावाओ 2:13 and 22, वेंसडे को पार्टली क्लाउडी 13 and 23. ओह, आई जस्ट रिमेम्बर समथिंग. I put out some cabbage plant and I was going to water it last night.
2: Oh, well, it may rain.
1: Oh, yeah, I didn't do it.
2: Well, the universe is going to provide.
1: Thank you.
2: Right?
1: Yeah. Okay.
2: Okay. let's have a song.
1: Okay, yeah. Let's go for
2: okay.
1: it.
2: Okay. Huh? Yeah. Yeah.
1: Number is 04300317013279 1701.

थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू अजय भैया, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू पीपल दैट कॉल्ड एंड सम रिक्वेस्टेड सॉन्ग सम जस्ट से हेलो। अच्छा लग रहा है जब आप लोग बात करते हैं, मिलते हैं, अच्छा लगता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अजय भाई भी ने गाना को रिकमेंड किया है, शायद दोस्तों आपको भी अच्छा लग जाए। चलिए, बहुत प्यारा गाना है और मीनिंगफुल सॉन्ग है, 1970 फिल्म सफर का गाना है और शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना के लिए।

मैं जब यहाँ आता हूँ आकर घंटों बैठा रहता हूँ और देखता रहता हूँ इस नदी के बहते हुए पानी को, ये चौड़ा पाट और दो किनारे जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही दूर, ये मांझी, ये कश्ती और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत। मैं जब भी इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनके साथ बहुत पुराना मेल है, जैसे इस धारा के साथ मुझे भी कहीं और जाना है, कहीं दूर जाना है, जैसे मुझे भी किसी नाव का इंतजार है, किसी मांझी की जरूरत है।

और चलो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस। ओके, चलिए अगला जो गीत है दोस्तों, एक इसमें कहा गया है कि जीवन के सफर जो है ना, जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। याद है गाना, बहुत प्यारा गाना।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल

0: Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi guys, I'm Madhvit from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया.
11: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें.
10: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
11: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से. और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं.
10: मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
11: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो.
12: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस. और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर. याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर.
13: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है.
14: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 0411270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में. फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद. कॉल नाउ ऑन 0411270035. रिमेम्बर द नंबर इज 0411270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर. फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003.
15: और देखिए दोस्तों, लाइफ में उस जगह पहुंच गया हूं जबकि जब कोई कुछ बताता है तो सुनने में अच्छा नहीं लगता ना कभी कभी.
16: आई नो, या
15: लेकिन जब कोई थोड़ा दरिंदा, कोई थोड़ा बुढ़ा हो जाता है, कुछ बोलता है तो शायद लोग उसको थोड़ा ज्यादा अहमियत देते हैं.
16: आई थिंक दे गिव यू अ लिटिल बिट मोर टाइम.
15: यू थिंक सो?
16: पेशेंस.
15: वैसे कहा गया है कि दोस्तों, कहता है कि जिंदगी बहुत तेजी से निकल जाती है ना. जो बातें कभी बहुत बड़ी लगती थी, राइट, आज उनकी, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस, आज उनकी अहमियत कम हो जाती है ना. लेकिन जो प्यार हम देते हैं, जो रिश्ते हम बनाते हैं, और जो अच्छाई हम दूसरों के लिए करते हैं, वही हमेशा याद रहते हैं.
16: ट्रू.
15: ओके. तो इसलिए मेरी सलाह है, कम गुस्सा कीजिए, ज्यादा मुस्कुराए, विच आई डू ऑल द टाइम. माफ करना सीखिए. आई नेवर कीप एनी ग्रजेस. व्हाट इज ग्रज? व्हाई डू पीपल कीप ग्रज? सम आई रिमेम्बर बी इससे देखना, मैं इसे कर दूंगा, उसको ये कर दूंगा, ये सब बेकार की बात है दोस्तों. माफ करना सीखिए और हर सुबह एक नया मौका की तरह शुरू कीजिए, ठीक है? उम्र सिर्फ कुछ देखो गिरने लगा. उम्र सिर्फ एक नंबर है, जब तक दिल जवां है तब तक जिंदगी हसीन है. ठीक है? तो डोंट काउंट हाउ मेनी इयर्स, अभी कितना दिन, ये सब भूल जाइए. जो आप करना चाहे करते रहे, दूसरों का मदद करते रहे, मुस्कुराते रहे, आगे बढ़ते रहे. ठीक है? ओके, हैविंग सेड दैट, चलो गाना सुनते हैं. यू आर प्लेइंग दिस. ओके, दैट्स व्हाई आई गॉट अ को-होस्ट लाइक मी.

0: और देखिए दोस्तों, हम अपना गाड़ी का सर्विस कराना नहीं भूलते हैं ना.
1: No, I'm going tomorrow.
0: Yep, well, my notice already come for next month, yeah. लेकिन अपने जो हमारे शरीर है इसका सर्विस हम अक्सर भूल जाते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट कराना और ये सब हम भूल जाते हैं. ठीक है, ये हमारे शरीर जो हमारा असली घर है, इफ यू थिंक अबाउट इट, राइट,
1: योर बॉडी इज द व्हीकल,
0: या जिसके अंदर हम रहते हैं. कौन है हम? सोल. तो आई डोंट नो,
1: यू आर नॉट द सोल,
0: दैट्स टू कॉम्प्लिकेटेड एट द मोमेंट. लेकिन मतलब यही है कि हम अपने आप को सर्विस करें, अपने सब कुछ, दांत हो या
1: रूटीन सर्विस चेक्स,
0: सब चेकिंग हमेशा करें. ठीक है
1: जी.
0: और देखिए दोस्तों, हर दिन एटलीस्ट 30 मिनट्स जरूर चलिए, और पानी वगैरह पीते रहें आप, फल और जो सब्जियां हैं ये खाते रहें, और जितना हो सके जो ये प्रोसेस्ड और बहुत मीठा खाना इसको कम कीजिए. ठीक है, मीठा बहुत ठीक नहीं है दोस्तों. आई थिंक दे ऑल्सो से इट्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर कैंसर. आई थिंक इट्स अ फूड फॉर कैंसर इफ यू ईट टू मच स्वीट्स. ओके, जैसे कि चॉकलेट वोकलेट बहुत ज़्यादा मत खाए. अच्छी नींद भी उतनी जरूरी है. अच्छा, जितनी अच्छी डाइट, नीड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक दिन हम अच्छा से नहीं सोते हैं तो यू बिकम वेरी इरिटेबल एंड क्या क्या से हो जाते हैं. मुझे पता चल जाता है जब मैं मीता को देखता हूँ सुबह कि आप एक दो शब्द कहती है, उससे मुझे पता चल जाता है अच्छी तरह से सोई या नहीं. और सिर्फ बॉडी नहीं दोस्तों, माइंड जो आपका है, माइंड हेल्थ भी बहुत जरूरी है. और हर रोज थोड़ा हंसिए, दोस्तों से बात कीजिए. देखे कि सोशलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके,
1: ओह यस,
0: या बट यू मस्ट हैव द राइट ग्रुप.
1: व्हाट, नो, द थिंग इज, इफ पीपल कैन रिमेंबर कपल इयर्स बैक विद कोविड व्हाट इट डिड टू अस, द डिप्रेशन पीपल वेंट थ्रू, द सुसाइडल थॉट्स दैट वर गोइंग थ्रू पीपल्स माइंड्स.
0: इफ आई टेल यू समथिंग,
1: यू हैव टू सोशलाइज, वी आर सोशल एनिमल्स.
0: बट इफ आई टेल यू समथिंग,
1: व्हाट,
0: इट डिडंट रियली बदर मी दैट मच.
1: नो, बट यू नो, इट्स चेंज्ड मी. I'm not interested in going out in big crowds.
0: Maybe I was
1: and
0: already changed.
1: People and like I don't socialize now. It's quality socializing.
0: Exactly,
1: I do.
0: And that's what I've been. I've got a group of friends that I mix with.
1: Yeah,
0: and we have a golden rule in that group that we are not going to talk about anybody.
1: Yeah,
0: we are gonna
1: Why
0: have fun,
1: you?
0: And that's all we do. And if somebody needs help, we very quickly get together, organize a fundraiser or something, you know. So this is a group that I've got, and I love that. And so it didn't really bother me that much. I'm not an outgoing person. Okay, so okay, thank you. अपने जो शौक के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है दोस्तों. Things that you want to do, right? It is very important you take out time and do it. सिर्फ बैठकर सोचो मत. Actually start doing it. और जो स्ट्रेस है ना, इसको जिंदगी पर बहुत हैवी मत बनाओ. आप स्ट्रेस से बच कर रहो. स्ट्रेस इज अ वेरी बैड थिंग. और स्ट्रेस हम कैसे होते हैं? स्ट्रेस जब बहुत ज्यादा वांटिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा ये मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं हम, और अपने जब स्टेटस को सीक करने लगते हैं, हमारे में जब ईगो बहुत ज्यादा हो जाता है, दिस इज आवर स्ट्रेसफुल थिंग. लिव सिंपल, जैसे हमारे बाप दादे रहते थे. दे वर सिंपल, एवरीबॉडी गोट अलोंग, दे वर नो कॉम्पिटिशन अमंग, बिकॉज एवरीबॉडी हैड द सेम थिंग, यू नो व्हाट आई मीन. तो मे बी जो नई जनरेशन है, दे डोंट नो दिस. वी न्यू दिस, यू नो. अगर एक पेयर जूता मिल गया तो भाई रात भर नींद नहीं लगेगी, बिकॉज दैट वॉज समथिंग यू नो बॉडी यूजुअली यूज्ड टू गेट.
1: Keep getting up and looking at it.
0: I can't remember when we used to go to primary school. I can't remember anybody really wearing a pair of shoes.
1: Is it?
0: Yeah. सबका कहीं पर इधर नाखून निकला हुआ है, कहीं टो में निकला हुआ है. That's how we went to school. Hardly anybody had shoes in those days.
1: Well, my days we had.
0: Well, you were much younger than that. I mean, you are young, much younger.
1: Not much younger.
0: Yeah, but 10, 12 years younger than I am.
1: 10 years only.
0: Yeah, well, that 10 years is a lot of 10 years.
1: I guess there's like a difference in how things were.
0: Well, a lot of changes happen.
1: Yeah.
0: Like, it does not mean it takes a long time to change.
1: No, no, you know? I know.
0: In 10 years, a lot of things change.
1: Lots of things change.
0: Yeah,
1: yes.
0: Yeah. So that's what it was. But anyway, I don't know. Pehle people used to be very stressless.
1: Maybe they had a better way of dealing with their stress. I'll tell you what was the difference.
0: No, there were no things to give them stress.
1: No. You know what the difference was?
0: Yeah.
1: People used to meet. People used to congregate, remember?
0: Yeah.
1: And they used to talk and they used to laugh. Now, everyone's so caught up with what they're doing and then they're busy with their phones. There's no time to go and have a good laugh.
0: I tell you what, it has become a very egoistic and very materialistic world. These two things give you a lot of stress, believe me.
1: Listen, I'm talking even from my experience, right?
0: Yeah.
1: When we were younger, newly married, kids were little, we had a group of friends.
0: Yep.
1: And we made it a point of meeting at least once a week in the weekend or even a weekday, if possible.
0: Yeah.
1: Have a couple nibbles and laugh and talk and the kids would play. And you're ready to face the entire week. Now, we all just carry on day in and day out. There's no time.
0: Well, in those days when you were at that stage of your life, everybody was sort of similar, same.
1: Okay. Yeah.
0: There was nothing about too much of ego or this and that. That's why everybody got along, right?
1: Mm.
0: Nowadays it's different. Nowadays it's whose shoulders you're rubbing and things like that, if you know what I mean. In those days, everybody was sort of same.
1: Mm.
0: Way of life was simple.
1: Yeah, the simple things in life give us so much of pleasure.
0: Exactly. Mm. So, but now it's very stressful, it's very competitive. And I feel sorry for the kids because growing up in this day and age, it is so competitive.
1: Yeah.
0: I mean, you know, if you're not educated, if you don't educate yourself, you probably get a hard time, you know.
1: You can't afford to not educate yourself.
0: Yeah, so kids have to understand that too, that you know, to be somebody in this world, you have to. Okay, aage badhe chalo ek aur gana sun lete hain. Aur agar aap bhi kuch sunna chahe dosto, to call me.
2: Arre?
0: Oh, call us.

और देखिए दोस्तों, शायद आपके साथ भी ऐसे होता होगा, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हम बचपन में सुनते हैं और फिर वो सिर्फ गाने नहीं रहते, ठीक है, वो हमारे जिंदगी की यादें में याद बन जाते हैं। उम्र बढ़ती रहती है, जमाना बदलता रहता है, लेकिन जैसे ही हाँ उनकी धुन कहीं कानों पर पड़ती है ना, कोई भी बजा देता है या आप बजा दो या कोई, तो हम एक पल के लिए फिर से अपने जो बचपन है जहाँ पर थे हम वहीं पर चले जाते हैं, है कि नहीं? कोई भी गाना हम सुनते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा अपने प्रेजेंटर से कि जब गाना बज रहा हो तो गाना काट कर कहो मत कुछ उसमें बीच में, क्योंकि ये जो यादें हैं ये याद टूट जाती हैं, यू नो, है कि नहीं? और शायद इसी को कहते हैं म्यूजिक का जादू, ठीक है। कुछ गीत कभी पुराने हैं होते हैं और क्योंकि वो हमेरा, और कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते हैं और वो हमारे और यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। कुछ वो एक स्टैम्प्ड है एक सिचुएशन के साथ, है कि नहीं? तो इसी तरह से एक गीत मुझे याद आया, तो मैंने सोचा चलो मैं सुना दूं। बहुत पुराना गीत है और आई डोंट नो, आई थिंक यू माइट हैव हर्ड इट, अगर नहीं तो चलो उसको ध्यान से सुनो दोस्तों, आपको भी अच्छा लगेगा।

0: अ शॉर्ट एंड स्वीट सॉन्ग एंड बहुत पुराना गाना था दोस्तों, और उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा. डू थिंग्स व्हाइल यू कैन, मेबी वन डे यू माइट नॉट बी एबल टू ड्राइव.
1: नो डोंट लाफ, इट्स नॉट अ लाफिंग मैटर. You know, after what was that? After 75, you have to keep getting a letter from the doctor to say you can still drive.
0: Are you How still will the doctor know? Okay, doctor will do
1: no,
0: eye
1: no,
0: test.
1: No, eye test and all of that. Eye test. Yep.
0: Okay.
1: Because my neighbor told me.
0: Even if your license doesn't expire, you still have to.
1: You still have to, yes.
0: What age?
1: I think it's 75. Oh. We checked on it.
0: Yeah, 75, yeah.
1: A couple months ago, I think we checked.
0: Only a few weeks ago. I think 2-3 weeks ago, I think.
1: I was not here 2-3 weeks ago.
0: Yeah, well, just before then.
1: Before that, yes.
0: Before you left, so, yeah.
1: So. Well, that's like more than a month.
0: Yeah. I know. I even know that Premaji said something and who else said?
1: Okay, and then?
0: Yeah, they told us, yeah, this is what you have to do. You have to have your eyes tested. So, yeah, this is in Australia. Is that in Queensland or what? We don't know.
1: I think
0: Shoba told me, yeah.
1: It has to be Australia. I don't think only limited to Queensland.
0: Okay. Which is a good thing, I suppose.
1: Mm.
0: Because a lot of people don't use glasses and they think they still... अगर आप अपना आई साइट को लूज करने लगते हैं दोस्तों, आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज स्लोली
1: डेपर्स
0: एंड यू गेट यूज टू इट, यू नो, लाइक स्लोली, यू नो, लाइक व्हेन यू गेट योर आईज डन, आई मीन आई चेक, एंड व्हेन यू गेट योर न्यू ग्लासेस यू सी, ओह माय गॉड, आई कैन सी सो क्लियरली. अप टिल देन यू डिडंट बॉदर.
1: यस, यू जस्ट थॉट दैट इज हाउ इट्स
0: सपोज्ड. आई थिंक सेम थिंग हैपेंस टू हियरिंग, यू नो. That's why you should get your medical checkup, you know, like you have a good, enjoyable life, you know. Yeah. Mm. Don't be lazy like me.
1: Lazy like you?
0: Yeah, getting your... But I do care. I do take a lot of care about myself now. I thought while I still got it, I might as well take care of it, right? Yeah. ओके दोस्तों, इस समय 22 मिनट हो गए हैं 8:00, और मैं आपको बता दूं कि सताक्षी के साथ आप हो जाएंगे 9:00, और फिर भूलना मत उसके बाद 11:00 आप हो जाएंगे संदेश के साथ, पंजाबी प्रोग्राम रहेगा, और 3:00 से निविया के साथ. ठीक है.
1: आई एम हियरिंग थिंग्स. ओके,
0: व्हाट आर यू हियरिंग?
1: आई एम हियरिंग लाइक अ एको.
0: ओह,
1: डजंट मैटर.
0: Okay.

और देखिए दोस्तों, कुछ गीत ऐसे हैं ना सिर्फ सुनने के लिए नहीं लेकिन महसूस करने के लिए, ठीक है। कुछ गाने ऐसे होते हैं दोस्तों जो आपको बिल्कुल पुराने बातें को ताज़ा कर देते हैं। और क्या बताऊँ मैं, जैसे इनमें से एक गीत जो भी मैं बजाने जा रहा हूँ, और शायद एक याद, एक अपना या फिर वो सुकून को कहीं पीछे हम अगर छूट गया हो तो फिर से याद दिला देता है। तो चलो, कौन सा गीत है, और एक गीत को गाया है रफीज साहब ने, मुझे मूवी नहीं मालूम है लेकिन फिर भी चलो बहुत प्यारा गीत है दोस्तों, और उम्मीद है आपको भी अच्छा लग जाए।

0: जी हाँ दोस्तों, पता नहीं मेरी आंखें क्या ढूंढ रही है। शायद कोई बिछड़ा हुआ प्यार, कोई पुरानी याद, कोई अपना इंसान, या फिर वो सुकून जो कभी जिंदगी में था जो अब खत्म हो गया। बड़ा सैड गाना था।
1: या आई नो,
0: लेकिन चलो, गाना तो गाना है ना।
1: आई नो,
0: क्या करेंगे, कभी कभी कुछ लोग हैं जो हमारे अंदर एम्प्टीनेस रहता है और वी नो हमेशा खोजते रहते, ढूंढते रहते कि उस वॉइड को किसी तरह से हम फिल करें, है कि नहीं। एंड फिर ये हो नहीं पाता शायद। तो चलो, ये गाना था वी ऑफन मिस पीपल, मोमेंट्स एंड फीलिंग्स फ्रॉम द पास्ट। हम सब फील करते हैं दोस्तों, है कि नहीं। कुछ ऐसे जो यादें हैं जो दे स्टे विद अस फॉरएवर, और कभी कभी हमारा जो हार्ट है सर्च करता ही रहता है हैप्पीनेस, लव। लेकिन आई थिंक इट हैपन्स विद एवरीबॉडी कि कुछ ना कुछ हम ढूंढते रहते हैं लाइफ में। खैर चलो, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और नंबर है 04300031701 या 3279-1701 पर हमसे आप बातें कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे कैसा भी गीत हो, अगर जो आपको पसंद है हम पेश करेंगे। एक और आया, रिक्वेस्ट आया था मेरे ख्याल से।
1: कैन आई जस्ट प्ले दिस वन फर्स्ट व्हाइल यू लुक फॉर दैट वन? ओके।
2: जाने वो कैसे लोग थे जिनके

0: और दोस्तों, अभी जो गाना आपने सुना है गुरुदत्त मूवीज का था, और आपको याद होगा कि गुरुदत्त इज वाइडली रिमेम्बर्ड एज हैविंग अ लाइफ मार्क बाय बोथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी आर्टिस्टिक सक्सेस एंड दी पर्सनल स्ट्रगल. पर्सनल अनहैप्पीनेस में हिज मैरिज टू गीता दत्त वेंट थ्रू अ डिफिकल्ट पीरियड. दे रिपोर्टेडली फेस्ड इमोशनल स्ट्रेन एंड स्पेंड टाइम लिविंग अपार्ट. और इमोशनल स्ट्रगल्स में फ्रेंड्स एंड बायोग्राफर्स हैव डिस्क्राइब्ड हिम एज अ सेंसिटिव एंड introspective person who struggled with periods of depression and loneliness. It's important to note that the exact nature of his mental health is not fully documented. Professional pressures, although films like Pyaasa and Kaagaj Ke Phool are now regarded as masterpiece, Kaagaj Ke Phool jo tha dosto was a commercial failure when it was first released. That disappointment affected him deeply. Or early death, Gurudat died in 1964 at the age of 39. Can you believe that? His death was ruled to have resulted from an overdose of sleeping pills combined with alcohol. Whether it was accidental or intentional has never been conclusively established, okay? And there was, and there continues to be debate among historians and biographers. Many people also believe that the themes in Pyaasa and Kaagaj Ke Phool, a loneliness, rejection, unfulfilled love, and the search for meaning reflect some of the emotions he experienced in his own life. However, it's wise not to assume those films were direct autobiographies. So, देखिए दोस्तों, कहते कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, चाहे मियाँ बीबी चाहे कुछ हो. बिकॉज यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू
1: ओवर थिंकिंग.
0: या ओके, सो ये बात को हमेशा याद रखे दोस्तों. चलिए, गुरुदत्त का और एक गाना है. चलो थोड़ा सेट लाइन में चले गए, मतलब मीनिंगफुल सॉन्ग्स है. शायद आपको ये गाना भी अच्छा लगे. रफी साहब का गाया हुआ है.

0: है.
1: वाओ, रफी साहब हैज रियली डन जस्टिस दिस टू दिस सॉन्ग. यू नो, गुरुदत्त के जो हर गाने में एक कहानी, एक एहसास दोस्तों, और जिंदगी की जो गहराई छुपी होती है, शायद इसीलिए उनका जो गीत अभी भी उतने ही प्यारे हैं जैसे पहले थे उस जमाने में. यू नो दैट. सो वेरी मीनिंगफुल सॉन्ग्स. और आज तक भी ये बात है शायद. अभी भी यही बात है. तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. और इस समय बस शायद तीन गाना और आपके लिए, चाहे चार होगा क्योंकि पुराने की छोटे होते हैं. ओके, चलो. उम्मीद है आज का जो प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा दोस्तों. थोड़ा सा सैड था, बट इट वॉज रियलिस्टिक. इट्स पार्ट ऑफ आवर रियल लाइफ, इजंट इट? देयर आर पीपल हु आर सफरिंग लाइक दैट. चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों.

0: जी भाई, थैंक यू विशाल भाई, आपने कॉल किया, थैंक यू। और मैं सोच रहा था कि एक दो हफ्ते से शायद विशाल वॉज आउट ऑफ एक्शन,
1: इज बैक, इज ओके।
0: चलिए समय मुक्ता में दोस्तों एक गाना मैं सुना देता हूँ और आपको शायद अच्छा लगे गाना। किशोर कुमार का गाया हुआ गीत है दोस्तों। और जी हाँ, जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर

0: व्हाट अ डिस्क्रिप्शन है. जीवन से भरी तेरी आंखें, तुम्हारी आंखें में पूरी जिंदगी बसी हुई है. क्या बात. ओके, सब कुछ है, खुशी है, दर्द है, उम्मीद है, प्यार, सब कुछ है आंख में. लड़की आंख
1: मार
0: डिफरेंस फ्रॉम दैट टू दिस. बॉय, चलो देखिए दोस्तों, हम कल नहीं रहेंगे. कल
1: नीलम
0: है और फिर शनिवार को परमा भाई है. संडे को मैं शायद 1 घंटे के लिए आऊंगा, शायद ही आऊंगा मैं, ठीक है. और संडे को बहुत से प्रोग्राम है, सुबह सुबह धार्मिक प्रोग्राम है, फिर मैं रहूंगा, फिर फिरोज भाई है, हाँ, फिर रोय सिंह है, फिर उसके बाद सुशीला है, फिर 5 बजे से शशि जोकन है और शताक्षी है. तो कार्यक्रम चलता रहेगा संडे का, लेकिन हमारे आप जानते हैं 7/24 है, तो कार्यक्रम आप सुनते रहे दोस्तों. ओके,
1: वेल आई होप एवरीवन एंजॉयड टुडेस प्रोग्राम. इट टुक अ डिफरेंट टर्न.
0: Yeah.
1: It became a little sad, but we should also make people sad.

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। रेडियो प्रसवानी लेकर आ गया है आपके लिए एक बार फिर से सुबह का एक बेहतरीन आगाज। दोस्तों, मैं हूं सताक्षी, आज एक बार फिर से आपके साथ, और मेरे साथ मॉर्निंग की एनर्जी है, मॉर्निंग की वाइब्स है, और ढेर सारे ऐसे गाने हैं जो इस मॉर्निंग को, इस सुबह को बहुत ही एनर्जी से भरने वाले हैं, आपको बहुत सुकून भी देने वाले हैं, और आपको कुछ नया करने के लिए मोटिवेट भी करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इट हैपेंस। रेडियो प्रसवानी पर सताक्षी है आपके साथ, और इट हैपेंस की शुरुआत इस अगले ट्रैक के साथ करते हैं। सुनिए और मेरे साथ यूं ही सुनते रहिए पूरे 2 घंटे इट हैपेंस, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो प्रसवानी पर।

इटहैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप दोस्तों रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। इसके पहले के सफर में आगे बढ़े विश करते हैं उन्हें जिनके लिए ये पल ये दिन बहुत ही स्पेशल और खास है, यानी जिनकी आज है वेडिंग एनिवर्सरी, उन सबको शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो। भाई आज किसी का प्यार आपकी जिंदगी में शामिल हुआ था, आज कोई मोहब्बत बनकर आपकी जिंदगी में आया था और आपको आपके परिवार को आपकी जिंदगी को सब कुछ उसने संभाल लिया, तो उसको एक थैंक यू कहना तो बनता है, उसे प्यार से एक हग करना तो बनता है और आज का दिन उसके साथ सेलिब्रेट करना तो बनता है। तो जीते रहिए आज के दिन को और जिनका आज हैप्पी बर्थडे है आपको हम भूले नहीं है भाई, बर्थडे बेबीज हमें याद है आप। सो बर्थडे जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक और इस बर्थडे के साथ जिंदगी को खूबसूरत बनाते रहिए, इसे जीते रहिए और सेलिब्रेट करते रहिए, है ना। ईश्वर करे कि जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, जो भी जायज ख्वाहिशें हैं आपकी, वो जरूर मुकम्मल हो। और जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास है उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबके लिए प्ले करती हूँ ये अगला ट्रैक, इसे एंजॉय कीजिए और मेरे साथ यूं ही सुनते रहिए इट हैपेंस सिर्फ और सिर्फ रेडियो प्रस्वानी पर।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बैक इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर. यू नो लाइफ में कभी कभी इंसान सिर्फ दो बातों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता है, और ये दो बातें अगर हम सॉर्ट कर लें तो शायद लाइफ जो है वो बहुत इजी और बहुत ही सिंपल हो जाएगी. पहली बात तो भाई लोग हैं जो हमें हमेशा डीमोटिवेट करते हैं. तुम ये नहीं कर सकते, तुम लाइफ में वो नहीं कर सकते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, ये चीज तुम्हारे लिए नहीं है. ऐसी बहुत सारी बातें आपको जिंदगी में सुनने को मिलती हैं. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमारी सेल्फ टॉक है, हमारी नेगेटिव सेल्फ टॉक जो हम खुद से करते हैं. पता नहीं मुझे ये काम तुक्के में तो नहीं मिल गया, पता नहीं मैं इसके लिए कैपेबल हूं कि नहीं, पता नहीं मैं लाइफ में आगे कुछ कर पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं मुझसे ये होगा कि नहीं. ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी नेगेटिव सेल्फ टॉक हम अपने आप से करते हैं. सो भाई अगर इन दोनों में से आपने एक को भी सॉर्ट कर लिया, उसे हल कर लिया, तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं. अब देखिए, आप दुनिया आपके बारे में क्या कहती है, ये दुनिया आपसे क्या कहती है, आप उस पर तो कुछ नहीं कर सकते, वो आपके बस में नहीं है. लेकिन आप खुद से क्या कहते हैं, आपकी सेल्फ टॉक अपने लिए क्या है, आप उसे जरूर ठीक कर सकते हैं. तो ट्राई कीजिए, अपने आप से कम अच्छी बातें किया करिए. और चलिए आगे बढ़ते हैं एक और ट्रैक के साथ. अभी एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए. इट हैपेंस रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर.

कहते हैं कि जिंदगी की बस में हर एक के लिए एक सीट जरूर खाली होती है, लेकिन कुछ लोग सही वक्त के इंतजार में और कुछ बस स्टॉप पर ही खड़े रह जाते हैं कि दूसरी बस जरूर आएगी। पर सच ये है कि कुछ रास्ते दोबारा नहीं मिलते। कुछ लोग कुछ पल अगर एक बार निकल जाएं तो उनकी याद आपको रातों में तो जगाती है, लेकिन आप उसे अपनी जिंदगी की हकीकत नहीं बना पाते हैं। इसलिए अगर आपकी मेहनत आपको कोई मौका दे या जिंदगी में कोई एक ऐसा दोस्त मिले जो आपको समझे, तो उसे कभी छोड़िएगा मत। एक बेटर इंसान एक बेटर मौके के तलाश में उस मौके या उस इंसान को गवाइएगा मत। चलिए आइए आगे चलते हैं एक और ट्रैक के साथ। एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
2: गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक. इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ दोस्तों, रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एम पर इट हैपेंस में. चलिए आइए बढ़ते हैं आगे आज की गानों की हैट्रिक के साथ. जी हाँ, कौन से तीन बैक टू बैक ट्रैक्स मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, आइए सुनते हैं. और ये रहा गानों की हैट्रिक का पहला ट्रैक.

की हैट्रिक। जी हाँ, सताक्षी के साथ आप यही सफर इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों रेडियो ब्रिस्वानी पर। गानों की हैट्रिक का आज का ये लास्ट ट्रैक सुनिए और मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस, और बने रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहें अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनु असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नु बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नु दान विच दे दियो। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

बात करते हैं इट हैपेंस में दोस्ती की। देखिए दोस्ती ना हर किसी से नहीं होती है, दोस्ती किसी खास इंसान से होती है जिससे आप मिलते हैं, वाइब्स मैच होती हैं, कनेक्शन फील होता है और कनेक्शन बन जाता है और फिर वो दोस्त और उसकी दोस्ती हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं हमेशा के लिए। तो है कोई एक ऐसा दोस्त आपका जिसके साथ वाइब्स भी मैच होती हैं, कनेक्शन भी फील होता है और उसके साथ होने से सुकून भी मिलता है? तो बस उसके नाम ही अगला ट्रैक है। एंजॉय कीजिए और शताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए इट हैपेंस सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी पर।

बैक इट हैपेंस सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेजू ब्रिस्वानी 1701 एम पर. यू नो अगर आप किसी एक ऐसे कमरे में एंटर होते हैं जिसमें 40 कुर्सियां हैं या शायद उससे ज्यादा या उससे कम भी और सारी की सारी भरी हुई हैं, लेकिन आप जब उस रूम में एंटर होते हैं तो आप वापस नहीं जाना चाहते, आप उस रूम में रहना चाहते हैं, आप उस रूम में बैठना चाहते हैं, लेकिन वहां पर एक भी कुर्सी खाली नहीं है आपके लिए. और जब आप उस रूम में एंटर होते हैं तो आप देखते हैं कि उन लोगों में से जो उन कुर्सियों पर बैठे हैं उनमें से कुछ लोग शायद उठेंगे, वो आपको अपनी कुर्सी ऑफर करेंगे कि भाई तुम बैठ जाओ, मैं देखता हूँ मेरे लिए शायद जगह बन जाएगी. कुछ ऐसे भी होंगे जो किसी और रूम में जाकर देखेंगे कि शायद किसी रूम में कोई चेयर खाली हो और आपके लिए वो ला दें, वो अरेंज कर दें. सो आपके लिए चीजें अरेंज करने वाले लोग भी मिलेंगे, आपको अपनी चेयर ऑफर करने वाले भी लोग मिलेंगे उस रूम में. और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं होने वाले, वो हिलने वाले नहीं है, और वो बैठकर सिर्फ ये देखेंगे कि इस बंदे को कुर्सी मिलती है कि नहीं मिलती है. राइट हाँ. सो यस, ऐसे लोग लाइफ में आपको हर कदम पे मिलेंगे. जब भी आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे. और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन है जो आपके लिए अपनी कुर्सी से उठता है, आपको अपनी कुर्सी ऑफर करता है, या फिर ऐसा कौन है जो आपके लिए चेयर सर्च करता है, आपके लिए मौके सर्च करता है, है ना जी. तो ऐसे लोग लाइफ में बहुत प्रेशियस, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनकी बहुत परवाह कीजिए. चलिए फिलहाल एक अगला ट्रैक सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर.